ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, नाउ वी आर लिसनिंग टू केदीचनाद सुप्रभातम, प्रेजेंटेड बाय श्री गायत्री वेंकटराघवन। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

त्वावायवो वायवस्त्वा त्वावायवः वायवस्थस्थ वायवो वायवस्थ स्थोपायव उपायवस्थस्थोपायवः उपायवस्थस्थोपायव उपायवस्थ उपायव इत्युप आयवः स्थदेवो देवस्थस्थदेवः देवो वो वो देवो देवो वः वत्सविता सविता वो वत्सविता सविता प्रप्रसविता सविता प्रार्पयत्वर्पयतु प्रप्रार्पयतु अर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमायार्पयत्वर्पयतु श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे कर्मणे श्रेष्ठतमाय श्रेष्ठतमाय कर्मणे श्रेष्ठतमायेति श्रेष्ठतमाय कर्मण आकर्मणे कर्मण आप्यायध्वं प्यायध्वमाप्यायध्वं प्याय

तदियमियमगात् अगाद्धिषणाधिषणागादगाद्धिषणा धिषणा बरिहिर्बरिहिर्धिषणाधिषणा बरिहिः बरिहिरच्छाच्छ बरिहिर्बरिहिरच्छ अच्छमनुना मनुनाच्छाच्छमनुना मनुना कृता कृता मनुना मनुना कृता कृता स्वधया अस्वधया कृता कृता स्वधया अस्वधया वितष्टा वितष्टा स्वधया अस्वधया वितष्टा स्वधयेति स्वधया अवितष्टा ते ते वितष्टा वितष्टा ते वितष्टेति वितष्टा त आ ते त आवहन्ति वहन्त्यावहन्ति वहन्ति कवयः कवयो वहन्ति वहन्ति कवयः कवयः पुरस्तात् पुरस्तात् कवयः कवयः पुरस्तात्।

नमः ओम उच्चैर्घोषाय नमः ओम उच्छाय नमः ओम उज्ज्वलाय नमः ओम उज्जयिन्यां महाकालाय नमः ओम उत्पत्ति स्थिति लगा लगा नमः ओम उत्पत्ति सम

0: पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम ओम ओम।
1: थोड़ा आवाज कम करो।
0: ओम ओम ओम ओम ओम। आदिगुरु भगवान शंकराचार्य विरचित,
1: ये स्पीकर को थोड़ा इधर घुमाओ, सीधे आवाज आ रहा है, थोड़ा उधर, थोड़ा बस बस।
0: आदिगुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिव भक्ति से ओतप्रोत शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर सायंकालीन विशेष संत प्रवचन श्रृंखला का आज छठा दिन है। ये 10 दिवसीय कार्यक्रम है। अभ्यास के लिए आपके पास पर्चा छपा हुआ है, श्लोक नंबर 57वां 5-7। नित्यं सोदर पूरणाय सकला नुद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः। सेवां न जाने विभो मज्जन्मांतर पुण्य पाक बलतः तं सर्व सर्वांतरस् तिष्ठस्य वहिते न वा पशुपते। ते रक्षणीयोऽस्म्यहम् एको वारिजबान्धव चेति नभो व्याप्तं तमो मण्डलम् भीत्वा लोचन गोचरोऽपि भवति। त्वं कोटिसूर्य प्रभः वेद्य किं न भवस्यहो घनतरम् कीदृग् भवेन्मत्तमा तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते। साक्षात् प्रसन्नो भव हंसः पद्मवनं समिच्छति यथा नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनम् चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते। चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलम् कैवल्यसौख्यप्रदम् क्रोधस्तो यहृता श्रमेण पथिकस्।

0: கிரகஸ்திரம் கிரகஸ்தமதிர் தீன பிரபு தார்மிகம் தீபம் சந்தமசா குலச்ச சிகினம் சீதாவ்ருதஸ்த்வம் ததா சேத சர்வ பயாபஹம் வ்ரஜ சுகம் சம்போ பதாம்போருஹம் அங்கோலம் நிஜ பீஜ சந்ததி ரஜஸ் காந்தோபலம் சூச்சிகா சாத்வீ நைஜ விபும் லதா சிதிருஹம் சிந்து சரித் வல்லபம் ப்ராப்னோதீஹ யதா ததா பசுபதே பாதாரவிந்தத்வயம் சேதோ விருத்திருபேத்யதிஷ்டதி சதா சா பக்திரித்யுச்யதே. நித்யம் சோதர பூரணாய சகலா நுத்திஷ்ய வித்தாசயா வ்யர்த்தம் பர்யடனம் கரோமி பவதஹ தே சேவாம் ந ஜானே விபோ மஜ்ஜன்மாந்தர புண்ய பாக பலதஸ் த்வம் ஷர்வ சர்வாந்தர திஷ்டஸ்யேவ ஹிதேன வா பசுபதே தே ரக்ஷணீயோஸ்மியஹம். ஹா, தோ பிரசங்க சல் ரஹா ஹை. பகவான் சங்கராச்சாரியஜி மகாராஜ், பகவான் சிவ கே சாமனே அப்னி தீனதா கா பாவ் வியக்த கர்த்தே ஹை. எக் தோ தீனதா கா பாவ் வியக்த கர்த்தே ஹை, தூஸ்ரா அப்னி நா சமஜி யானி மூர்க்தா கா பி பாவ் வியக்த கர் ரஹே ஹை. நித்யம் சோதர பூரணாய சகலான் உத்திஷ்ய வித்தாசயா. மேரி அவஸ்தா ஐசி ஹை, பகவான் நே ஜோ பேட் தி ஹை, பாபி பேட், ஜன்ம தியா யே தோ பஹுத் அச்சா கியா, லேக்கின் இஸ் ஜீவன் கே சாத் ஏக் ஜோ பேட் கா பாக் ஜோட் தியா ஹை, சாரே முசிபத் கா ஜட் வஹி ஹை, ஔர் உஸி கே சல்தே மே ஹைரான் ஹோதா ஹூம். சங்கராச்சாரியஜி கேதே ஹை, சன்யாசி ஹோனே பர் பி பேட் நஹீ சூட்டதா, बड़ी मुसीबत है भाई. सन्यासी होने के बाद घर छूट गया, मां छूट गई, बाप छूट गया, आई छूट गए, बंधु छूट गए, इष्ट मित्र छूट गए, मेरा तेरा भाव छूट गया, कदाचित पहले संन्यास लेने से पहले वो गृहस्थ रहे होंगे तो पत्नी छूट गई, अखंडानंद जी महाराज की तरह, प्रेमपुरी जी महाराज की तरह, बच्चे छूट गए, गांव छूट गया, है ना, सब छूट गए कि नहीं, लेकिन एक पेट नहीं छूटा, सब छूट गया लेकिन पेट नहीं छूटा भाई, जहां जाओ वहीं पीछे पड़ा रहता है। मुझे लगता है सन्यास लेने के बाद ये पेट भी छूट जाता तो सभी सन्यास लेते, लेकिन छूटता नहीं इसलिए कोई भी सन्यास नहीं लेता है, वो तैयार नहीं होते सन्यास लेना। शंकराचार्य जी कहते हैं नित्यम स्व उदर पूर्ण आया, उदर माने पेट। हमारी समस्या एक तो अपना ही पेट भरने की मुसीबत है, सन्यासी को तो इसीलिए शंकराचार्य जी कहते सो उदर पूर्ण आया, क्योंकि मां का पेट भरने की चिंता नहीं है सन्यासी को, है सन्यासी को केवल अपना पेट भरना है, मां का पेट भरना नहीं है, बाप का भी पेट भरना नहीं है, बाप छूट गया मां छूट गई, पत्नी का पेट भरना नहीं है, पति का पेट भरना नहीं है वो छूट गए, बच्चों का पेट भरना नहीं है वो भी छूट गए, क्या रह गया स्व उदर, पर उदर नहीं स्व उदर, आप लोगों को तो अपना तो पेट भरना है ही है, साथ ही सन्यासी आकर खड़ा हो गया तो उसका उदर कौन भर देगा, बोलो, आपको अपने पेट भरने की समस्या तो है ही है, साथ में सन्यासी आकर दरवाजे में खड़ा है तो उसका पेट भरने की भी जिम्मा किसकी है, बोलो, आपकी है। इसी तरह कोई ब्रह्मचारी आके खड़ा हो गया उसका भी पेट भरने की जिम्मा आपकी है, शादी किया तो पत्नी का पेट भरने की जिम्मा किसकी है, पति की, और आजकल की पत्नी का पेट पति का पेट भरने की जिम्मा पत्नी का, दोनों एक दूसरे के भरने में लगे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के पेट कभी भरता नहीं, लगे दोनों हैं, पहले अकेले भरता था अब दो दो लगे हुए हैं, पेट का कुछ साइज बढ़ गया लगता है है ना, पहले की अपेक्षा आजकल पेट की साइज कुछ बढ़ गया लगता है, पहले अकेले पति कमाता था सारे कुटुंब का पेट भरता था तो सभी का पेट कुछ छोड़ा था साइज होगा इसीलिए हो गया काम, और अभी सभी कमाते हैं फिर भी नहीं भरता है तो साइज बढ़ गया ऐसा लगता है, बुरा नहीं मानना, पहले केवल मारवाड़ी बाइयों का पेट बड़ा होता था उन लोग बड़े तगड़े तगड़े मोटे मोटे दिखते थे पहले, अब आज तक तो सभी पेट में बड़े बड़े दिखते हैं भाई, सभी का पेट लगा है तोंदा लटका हुआ है, चाहे गुजराती हो चाहे मारवाड़ी हो चाहे महाराष्ट्रियन हो चाहे यूपी का हो, इसलिए कुछ साइज बढ़ गया लगता है, नहीं बड़ी समस्या है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि मुझे तो केवल एक पेट भरनी थी, तो एक पेट भरने के लिए भी मुझे इस पेट ने क्या किया, व्यर्थम पर्यटन अब करो मैं, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, व्यर्थ घूम रहा हूं मैं, पर्यटनम करोमि। सन्यासी क्यों भटकता है भाई एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव? पर्यटनम सोदर पूर्णाय, अपने उस एक पेट भरने के लिए घूम रहा हूं। नित्यम, वो कोई एक दिन भरने से पूरा होने वाला नहीं है, इसलिए नित्यम सोदर पूर्ण आया। एक बार भर देने के बाद फिर खाली ना होता तो सबसे आनंद आता, जैसे तैसे भर लेते, फिर उसको भरना न पड़ता तो। एक महात्मा कहते थे भगवान ने ऐसा एक घड़ा बना दिया है, ऊपर से डालने के लिए मुख बना दिया और नीचे एक छेद बना दिया, तो खाली का खाली, सुबह भरो शाम खाली, शाम भरो सुबह खाली। ये घड़ा भी कैसा घड़ा बना दिया, वो छेद न बना दिया होता तो उसका क्या बिगड़ता। इसीलिए नित्यम हमेशा भरना पड़ रहा है। स्वोदर पूर्णाय सकलान उद्दिश्य वित्ताशया, केवल पेट भरना होता तब
1: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thirunariya Tamarosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: महाराजा भर्तृहरि ने लिखा है, काकोपि जीवति बलिम च भुंगते, काकोपि जीवति चिराय बलिम च भुंगते। अपने पेट भरकर तो काग भी जीता है। लोग जो भोजन करते हैं उसमें से दो चार दाने जो गिरे हुए होते हैं उन्हीं को चूंग चांग कर कौवा भी अपना जीवन जीता है। कुत्ते भी जीते हैं कबल खाकर, लेकिन कौवे को न आश्रम बनाना है न मकान बनाना है। कुत्ते को न मकान बनाना है न आश्रम बनाना है, केवल पेट भरना है। इसलिए दौड़ता है, पेट भर लेता है, दिन भर सोता है, रात भर सोता है। महाराज, एक तो पेट भरने की समस्या है, दूसरी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवां आश्रम बन गए। वो आश्रम को कैसे बनाओगे भाई? है? आश्रम बनाना है, आश्रम चलाना है, तब क्या हुआ? वित्ताशया है, वित्ताशया। तुम्हारे आत्मानंद स्वामी बंबई केवल तुमको वेदांत सुनाने आता है? तुम लोग क्या समझ रहे हो बोलो? स्वामी आत्मानंद गिरी काठमांडू से, नेपाल से केवल हमको वेदांत सुनाने आते हैं, यही समझ रहे हो? हैं? अरे भाई, वेदांत सुनाने के बाद थोड़ी बहुत दक्षिणा देना बंद करो तो नहीं आएगा आत्मानंद। सच्ची बात कह रहा हूं, आत्मानंद क्या, कोई भी आनंद नहीं आएगा। हाँ। बोले महाराज, आपको पैसा क्यों चाहिए? सुबह शाम दाल भात खाने की व्यवस्था हम मिला देते हैं। बोले तुम्हारी दाल भात तो हम वहीं हरिद्वार बैठ के भी खा लेंगे, वहां हजार अन्न छत्र खुले हुए हैं, कहीं भी खड़े होकर दाल भात खाकर पेट भर लेंगे। है? बोले हमको वेदांत तो सुनाने आओ ना। तुमको वेदांत तो सुनाने के लिए तो वहीं आओ ना, तुमको सुनना हो तो वहीं आओ। नहीं महाराज, हमको फुर्सत नहीं है वहां आने का। बोले फुर्सत नहीं है तो मरो, खाली वेदांत तो सुनाने के लिए क्यों आएंगे? बोले नहीं महाराज, वेदांत की बात नहीं, वेदांत भी सुना दीजिए, आश्रम चलाने के लिए थोड़ी बहुत दक्षिणा दिया करेंगे भाई। बोले तब तो आएंगे, तब तुमको समय निकालने की जरूरत नहीं, हम अपना समय निकालेंगे। संसार से इसी तरह चल रहा है, चल रहा है कि नहीं बोलो? मैं सच बोल रहा हूं। सभी को मुझे लगता है यहां आने वाले हर महात्मा के पीछे कम से कम भी एक मठ तो उसके साथ जुड़ा हुआ है, और थोड़ा बड़ा होगा तो जो महात्मा जितना बड़ा उसके मठ उतने ही बड़े है, जो महात्मा जितना प्रसिद्ध उसके मठ उतने ही व्यापक। लेव जी, अब वो सबको चलाना है कि नहीं बोलो? उधर का आश्रम वाला कोठारी कहता है, महाराज पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया। उधर का आश्रम वाला कहता है, महाराज पैसा खत्म हो गया, राशन खत्म हो गया। अच्छा भाई, हम बंबई कथा करने जा रहे हैं, वहां से जब लौट के आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करो। ले जी, शंकराचार्य जी स्पष्ट कह रहे हैं, वो ये मैं नहीं कह रहा हूं, कह रहे हैं। हाँ, उनके साथ भी हजार शिष्य पीछे पीछे चलते थे, तो समस्या तो उनके साथ भी थी, मंडली चलती थी। नित्यम सोधर पूरणाय सकलान उद्दिश्य वित्ताशया, कुछ मिलेगा, संपत्ति मिलेगी, धन संपत्ति मिलेगा, खाने को मिलेगा। व्यर्थम पर्यटनम करोमि भवतः, ये विश्वास न सन्यासी को है न गृहस्थों को है, और इसलिए वो व्यर्थम पर्यटनम करोमि, भटक रहा हूं। महाराज भर्तृहरि ने एक कुत्ते को लक्ष्य करके कहा, एक कुत्ता तो सुबह से शाम तक दौड़ता रहता है, शांति से बैठता नहीं है, क्या दौड़ने मात्र से लक्ष्मी मिलती है? माधव माधव विनय धावन तुम्हारे दौड़ने मात्र से लक्ष्मी नहीं मिलती। यदि दौड़ने मात्र से लक्ष्मी मिलती तो कुत्ता सबसे ज्यादा धनी होता। लक्ष्य किया, ये संसार के मनुष्य हो तुम, रात दिन दौड़ रहे हो। क्यों दौड़ रहे हो? लक्ष्मी के लिए दौड़ रहे हो, लक्ष्मी मिलेगी इसके लिए दौड़ रहे हो। और दौड़ने मात्र से लक्ष्मी मिलती तो सबसे ज्यादा लक्ष्मी किसके पास होती? आज कुत्ते के पास होती, अमेरिका के कुत्ते के पास तो होती है, वो इंडिया के कुत्तों के पास नहीं। वहां का नियम क्या है पता है? अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को बिल नहीं करते, कहते बच्चे तो कमा लेंगे खा लेंगे। फिर अपनी प्रॉपर्टी किसको बिल करते हैं मरने से पहले? घर में पाले हुए कुत्ते। मैं मर जाऊंगा तो ये कुत्ता कमा के खा तो सकता नहीं है, इसलिए इनको कौन पालेगा फिर? तो मैं अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर देता हूं, जब तक ये बचेगा ये प्रॉपर्टी से इसका गुजारा चलेगा। कुत्ते के नाम पर बिल कर दिया और मर गए। ले जी, और वो कुत्ते दौड़ते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं और बिल मिल गया, पैसा मिल गया उनको। और हमारे यहां के कुत्ते दौड़ते रहते हैं, कुछ नहीं मिलता है बेचारा, टुकड़ा भी नहीं मिलता है। नित्यम सोधर पूरणाय सकलाट उद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थम पर्यटनम करोत्मी। बिना मतलब दौड़ता रहता हूं मैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। भवतः सेवाम न जाने विभो, आपकी कृपा हो जाए तो कहीं दौड़ने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरी बुद्धि में आई नहीं, ये मेरी मूर्खता थी, अपनी मूर्खता से मैं दौड़ रहा हूं। जबकि आप एकमात्र आपकी कोई सेवा करे, उस आपके शरण में आपके आश्रय में रहने वाले को न उधर पूरण के लिए दौड़ना पड़ जरूरत है, न वित्त के लिए दौड़ने की जरूरत है। आपकी कृपा हो जाए तो सर्वस्व उसको प्राप्त हो सकता है। वरिवसी तत्चरणयोर, आपकी चरण की पूजा सेवा करने वाले बाणासुर को यदृद्धिम सुत्राम्रो परम उच्चैरपि सति। सुत्राम्ण माने इंद्र का साम्राज्य, हालांकि सबसे उच्च साम्राज्य था, लेकिन आपकी पूजा करने वाला बाणासुर को तो इंद्र के साम्राज्य को भी तुच्छ करने वाला साम्राज्य आपकी कृपा से प्राप्त हो गई। अधश्चक्रेमाण, क्योंकि इंद्र के जो साम्राज्य वो केवल स्वर्ग की साम्राज्य है, आपके कृपा से जो साम्राज्य बाणासुर ने प्राप्त की वो तो तीनों लोक का साम्राज्य प्राप्त किया, पाताल का भी, मर्त्य लोक का भी, है ना। और आपकी कृपा से बाणासुर ने तो स्वर्ग को भी जीता, मर्त्य लोक को भी जीता, पाताल को भी जीता। तो स्वर्ग का साम्राज्य तुच्छ हुआ कि नहीं? ये कैसे संभव हुआ? वरिवसी तरी त्वचरण योर, बाणासुर ने और कहीं कहीं इधर उधर भटका नहीं बाणासुर, केवल आपके चरण का आश्रय लिया था, वो आपके चरण को छोड़कर कहीं गया नहीं। बाणासुर की शिव भक्ति तो आप लोगों ने सुना ही है। उसका नियम था, प्रतिदिन पार्थिवेश्वर का निर्माण करता था और पूजा करता था, विसर्जन करता था। उसने कहीं पुराण में पढ़ ली कि 125,000 शिवलिंग बनाकर पार्थिवेश्वर की पूजा करेगा तो उसको सारा साम्राज्य प्राप्त होगा। तो उसके मन में इच्छा हो गई कि वह सेवा भी मैं करूं, लेकिन हाथ तो दो है, कैसे करूं। फिर भी जैसे भी उसने अपना समय निकालकर कुछ न कुछ पार्थिवेश्वर निर्माण करता था, प्रतिदिन मिट्टी लाता था, शिवलिंग निर्माण करता था। उस शिवलिंग में आवाहन से लेकर विसर्जन पर्यंत षोडशोपचार पूजा करता था। फिर सायंकाल आरती करके नर्मदा में ले जाकर विसर्जन करता था। तो भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तुम्हारी इस आराधना इस पूजा से मैं प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहते हो वरदान मांगो। बोले महाराज अभी तो 1,25,00,000 शिवलिंग बनाता हूं, पूजा करता हूं इन दो हाथों से, मेरी इच्छा है करोड़ करोड़ शिवलिंग की अर्चना करूं, लेकिन ये दो हाथ कम हो गए, आप मुझे ज्यादा हाथ दोगे तो उन हाथों से मैं ज्यादा शिवलिंग बनाकर ज्यादा पूजा कर सकूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बोलो माणासुर ने, तो भगवान ने कहा कि जब मेरी ही पूजा करनी है तो तुझे हाथ देने में क्या कंजूसाई करनी है, तथास्तु कह देना है मुझे, है चेक काटकर तो देना था नहीं, तथास्तु। भगवान शिव ने तथास्तु कह दिया तो बाणासुर के 1,000 हाथ हो गए। अब तो बाणासुर बड़ा खुश हो गया 1,000 हाथ से, और रोज 1,25,00,000 शिवलिंग का निर्माण करता था मिट्टी से रोज, और उसकी षोडशोपचार पूजा करता था, और सायंकाल आरती करने के बाद विसर्जन करता था नर्मदा में ले जाकर। दूसरे दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, मिट्टी खोद कर लाता था, शिवलिंग बनाता था, और आवाहन से लेकर षोडशोपचार पूजा करता था। तो शाम के समय में प्रदोष पूजा करने के बाद फिर नर्मदा में ले जाकर विसर्जन करता था। वाह क्या कहना भाई। और बाणासुर ने जिन शिवलिंगों का निर्माण करके नर्मदा में विसर्जन किया,

वैश्य शूद्र अंत्यज सबको करनी चाहिए, शास्त्र में इसका वर्णन है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चान्ने च संकर आहा, वर्ण संकर भी कर सकता है। मत भक्ति भावना पूता यान्ति मत परमं पदम, म्लेच्छोपि या यदि मत भक्ति भक्ति समन्विता न तत् समत् चतुर्वेदी नाग्निष्टोमादि कृत नर। यस्तु पूजयते लिंगम माम जपत माम जगतपतिम, यदि माम जगतपतिम ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वा मत्परायण तस्य प्रीत प्रसादस्याम सुभान लोकान अनुत्तमा। ये पूजा का बहुत महत्व है, शिव पूजन की बड़ी महिमा है। शिव गीता में, सूर्य पुराण में, विष्णु पुराण में शिव पूजन का बहुत महिमा है। वाणासुर ने पूजा की, उससे प्रसन्न होकर शिव साक्षात आ गए, प्रकट हो गए, कहा कि बेटा अब क्या इच्छा है बोलो। बोले महाराज मेरी अब इच्छा है आप मेरे घर में विराजमान हो, कैलाश छोड़ दो, मेरे घर में रहिए, और इन 1000 हाथों से मैं आपकी सेवा करूं प्रत्यक्ष, बोलो। बोले मैं अकेला नहीं हूं, तो मेरी पत्नी है पार्वती, उसको क्या करूंगे। बोले उसको भी ले आइए, तो मेरी सेवा तो तू करेगा, पार्वती की सेवा कौन करेगा। बोले महाराज मेरी बेटी उषा है ना, वो करेगी, हम दोनों बाप बेटी मिलकर आप और अपने पार्वती की सेवा किया करेंगे। बोले चल तू सेवा करता है तो हमको क्या हर्ज है, भिक्षा मांगने जाना पड़ता था, तू घर में ही खिला देगा, कोई हर्ज नहीं है। भगवान शिव बाणासुर के ही रहने लग गए। तो शाम के समय खा पीकर शिव जी सोए हुए थे, 1000 हाथ से शिव जी के पांव दबा रहा था कौन, कितना बड़ा शरीर होगा शिव जी का भाई, ने? 1000 हाथ से भगवान शिव के पांव दबा रहा था। एक दिन दबाते दबाते कहने लगा उसने, महाराज आपकी कृपा से 1000 हाथ मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न उठता रहता है कि इन 1000 हाथ में कितनी ताकत है, वो नापने का थर्मामीटर नहीं मिल रहा है। बोले क्यों, क्योंकि कोई भी मैं जिससे लड़ना चाहता हूं, मैं जांचना चाहता हूं कि मेरे हाथ में कितनी ताकत है, मेरा नाम सुनते ही सब डर के मारे सरेंडर हो जाते हैं, कोई लड़ना सामने खड़ा ही नहीं होता है। तो आज तक कोई मेरे बराबर या मेरे से ज्यादा कोई मेरे से लड़ता हिम्मत करता तो मुझे पता चलता कि 1000 हाथ में कितनी ताकत है। आज तक ये जांचने का मौका ही नहीं मिला महाराज कितनी ताकत है। मेरी इच्छा है, और कोई नहीं मिलता तो नहीं सही, आपसे ही दो दो हाथ किया जाए, पता तो चले कि हाथ में भुजदंड में कितनी ताकत है। भगवान लेटे लेटे मुस्कुराए, अच्छा बेटा तुम्हारी यही इच्छा है, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी, तथास्तु। बोले कब महाराज, कब लड़ाई होगी, कब लड़ेंगे हम। बोले मुझे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी इच्छा पूरा करने वाला एक और है, वो पूरा कर देगा। कौन? बोले वो द्वारिका में रहता है, वो पूरा कर देगा तुम्हारी इच्छा। कब महाराज? बोले जब तुम्हारा ये ध्वजा गिरेगा तब वो आएगा, ये समझ लो। अब बाणासुर रोज सुबह उठता था, बाहर जाके छत में अपना ध्वजा देखता था कि गिरा कि नहीं, वो समय आया कि नहीं है। तो एक दिन तो उषा ने स्वप्न देख लिया, अनिरुद्ध के साथ उसका प्रेम हुआ,

0: अब उषा ने कह दिया कि मेरा ऐसा हुआ है, तो चित्रलेखा ने कह दिया कि कौन है बताओ। बोले मैं जानती तो समस्या न होती, स्वप्न में हुआ है। चलो स्वप्न में ही सही, जो भी होगा तीनों लोक में उसको मैं लाकर तुमको खड़ा कर दूंगा तुम्हारे सामने। मैं योगिनी हूं, योग शक्ति है मेरे पास। हां, चित्र बनाया, पहले तो स्वर्ग के देवताओं के, इंद्र आदि के, जयंत आदि का फोटो बनाया। ये था तुम्हारे स्वप्न में आने वाला? बोले नहीं, ये था नहीं। फिर प्रसिद्ध जो राजा रजौड़े थे, राजकुमारों थे, उनका चित्र बनाया। ये था? नहीं। ये था? नहीं। तो चित्रलेखा ने विचार किया कि शायद द्वारिकावासी कोई आया होगा, तो कृष्ण का फोटो बनाया। ये था? बोले नहीं, कभी कभी कृष्ण भी जाता था काला। आप लोगों के आया कि नहीं, रात्रि स्वप्न में आया कि नहीं आप लोगों के पास? नहीं आया? चलो, आजकल ईमानदार हो गया वो, नहीं तो हैरान करता था वो। तो बोले ये था? बोले नहीं। तब प्रद्युम्न का फोटो बनाया, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न। बोले मिलता मिलता तो है, लेकिन नहीं, पक्का तो नहीं है, लेकिन नाक भी उसे मिलता जुलता है, कान आंख गाल, लेकिन पक्का वो नहीं है। बोले हां, अब स्रोत मिल गया। तब अनिरुद्ध का फोटो बनाया दिखाया, तो बस लज्जित तो हो गई उषा, यही था। कौन है, कहां रहता है, मुझे तो यही चाहिए बस। उषा ने जिद कर दी, तो बोले चिंतानगर में उसको ला देती हूं। चित्रलेखा गई आकाश मार्ग से सोनितपुर से सीधा द्वारिका। सोनितपुर माने तेजपुर, आसाम में है। सीधे द्वारिका पहुंच गई। रात के समय में सोए हुए थे अनिरुद्ध, चारपाई के सहित उठाकर लाई, ले तो अपनी इच्छा पूरा कर, बस अब खुश है? बोले अब खुश हूं। अब उदय सुबह देखे तो द्वारिका में अनिरुद्ध गायब है ही नहीं, कहां गया, क्या हुआ? पता लगाया, कृष्ण ने कहा कि पता लगाओ। नारद जी पहुंच गए, ना आ रहा है। ए नारद जी, क्या हुआ? मेरा बेटा क्रिंडम हो गया, पोता, बेटा नहीं, अपहरण हो गया। कहां गया? ओ, बोले क्या हुआ? अच्छा, अरे मैंने उसको तो वहां देखा था भाई। कहां देखा था? तेजपुर, सोनितपुर, माणासुर की राजधानी में। अरे उसकी ये हिम्मत हो गई, कैसे गया, क्या हुआ? नारद जी ने सब इतिवृत्ति सुना दी। तो बोले उसके लड़के हम झगड़ा करके भी, युद्ध करके भी उसको ले आएंगे, लेकिन ये चौमासा हो गया, अब क्या करें? चौमासा पूरा होने दो, तब जाएंगे। जहां चौमासा समाप्त हुआ कि उसका छत का जो है ध्वजा गिर गया, तो भगवान श्री कृष्ण इधर से चौमासा पूरा होते ही सेना दल बल के सहित तेजपुर में आक्रमण किया, युद्ध हो गया बाणासुर के साथ भयंकर। लड़ते लड़ते उधर शिवजी, इधर कृष्ण, नारायणी सेना और शिवसेना, महाराष्ट्र की नहीं दोनों लड़ रहे, शिव और कृष्ण दोनों लड़ रहे हैं। अंत में कृष्ण ने कहा कि हे भोले बाबा, कुछ तो मान रखो, ये युद्ध आपकी और मेरी प्रतिष्ठा का विषय हो गया है, मुझे तो इसको मारना तो था नहीं, सहमति कर लेते हैं। भगवान शिव ने कहा कि मेरा चेला है, उसके पक्ष में लड़ना मेरा फर्ज है, मुझे वह सुबह शाम दाल भात रोटी खिलाता है, अपने 1000 हाथों से वो सेवा करता है, तो उसके साथ मुझे लड़ना है, क्या करें? बोले नहीं नहीं, ऐसा करो, हम उसको मारेंगे नहीं। तो शिव जी ने कहा कि ऐसा करो, बहुत दिन हो गया लड़ते लड़ते, मुझे थोड़ा सोने की इच्छा है। कृष्ण को कहा जृम्भणास्त्र छोड़ दो, उससे मैं सो जाऊंगा, और जब तक मैं सोऊंगा तब तक तुम इससे लड़ते रहना। तो कृष्ण ने जन्माष्टमी छोड़ा, शिवजी सो गए। तो शिवजी सो गए तो बाणासुर की क्या हिम्मत थी कृष्ण से लड़ने की। एक एक हाथ काटते गिराते किया, जब दो हाथ बचे हैं तब शिवजी ने आंख खोली और जमुआई लेते हुए हा करते हो, कभी कभी आप लोग करते हैं ना कथा सुनते सुनते, इसी तरह जमुआई लेते हुए भगवान शिव उठे, बस कृष्ण हो गया।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ shaivam.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन शिव महिमना स्तोत्र इन हिंदी, प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री धर्मानंद जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
2: तो वे ढूंढते ढूंढते महर्षि कपिल के आश्रम में जाते हैं। वहां एक खंभे से बंधे हुए अश्व को देखकर इन्हें बहुत क्रोध आता है और महर्षि के आश्रम में उत्पात शुरू कर देते हैं। इधर महर्षि समाधि में बैठे हुए हैं, उत्पात से उनकी समाधि भंग हो जाती है, उन्हें बड़ा क्रोध आता है। उनके क्रोधाग्नि से महाराज सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो जाते हैं। इधर दूत ने महाराज सगर को समाचार सुनाया कि महर्षि कपिल के आश्रम में आपका यज्ञीय अश्व बंधा हुआ है और महर्षि के कोप से 60,000 पुत्र जलकर राख हो गए हैं। सगर के दूसरे पुत्र अंशुमान जाते हैं, जाकर महर्षि की प्रार्थना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि हमारे भाइयों से भूल हो गई, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। महर्षि प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम यज्ञ अश्व को ले जाओ और अपने यज्ञ को संपन्न करो। अंशुमान ने पूछा कि जो हमारे भाई जलकर राख हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? महर्षि कहते हैं कि ब्रह्म साप से दग्ध हुए लोगों का उद्धार केवल गंगा ही कर सकती है। तुम भगवती गंगा की तपस्या करो, गंगा प्रसन्न होकर जब धरती पर आएगी तभी तुम्हारे भाइयों का उद्धार होगा। अंशुमान अश्व को ले जाते हैं, यज्ञ कर्म संपन्न करते हैं, तदनंतर तपस्या करने लग जाते हैं। तीन पीढ़ी तपस्या की इसके बाद गंगा का अवतरण होता है। जैसे हम कोई जैसे किसी के दादा दुकान खोले, उसके बाद पिता फैक्ट्री खोलता है और जो पुत्र होता है उस फैक्ट्री के द्वारा संसार में विस्तार करता है। इसी प्रकार से महाराज अंशुमान तपस्या करते करते शरीर पूरा हो गया। उनके पुत्र महाराज दिलीप ने तपस्या की। दिलीप के सुपुत्र जब महाराज भगीरथी ने तपस्या करी तब जाकर भगवती गंगा प्रसन्न होकर दर्शन दिया। गंगा ने कहा तुम वरदान मांग लो। गंगा के कहने से ये पुनः प्रार्थना की कि मां मैं अपने भाइयों को उद्धार के लिए तुम्हें धरती पर आमंत्रित करता हूं। भगवती गंगा ने कहा मैं तो पृथ्वी पर चलने को राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन रोकेगा, हमारे प्रवाह को कौन संभालेगा? ब्रह्मा जी से मंत्रणा करते हैं। मंत्रणा करने के बाद इन्हें मालूम पड़ा कि भगवान शंकर ही केवल गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। दोबारा पुनः हिमालय जाते हैं, वहां एक शिव की पिंडी बना करके भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं। भगवान शिव महाराज भगीरथी की तपस्या से प्रसन्न होकर कहते हैं, वरम ब्रूहि, वरम ऋणीष्व। महाराज भगीरथी हाथ जोड़कर खड़े हैं, भगवान शंकर दिव्य मुद्रा में बरधस्थ होकर दर्शन दे रहे हैं। महाराज भगीरथी ने कहा कि भगवती गंगा ने कहा है, मैं पृथ्वी लोक पर आने के लिए राजी हूं, परंतु हमारे वेग को कौन संभालेगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवती गंगा के वेग को संभालने के लिए पधारिए। भगवान शंकर ने तथास्तु कर दिया। इधर प्रसन्न होकर भगीरथी आते हैं, जैसे ही ब्रह्मांड को भेदन करती हुई गंगा जी धरती पर पधारती है, उसी गंगा जी का चित्रण इस 17वें श्लोक में किया गया है कि जो गंगा आकाश को व्याप्त करके रखी है, उस गंगा की शोभा कैसी है, तो जिस प्रकार से जल में सूर्य चंद्र तारा प्रतिबिंबित होते हैं उनकी शोभा बढ़ जाती है, इस तरह से तारा गण की समुदाय से उनके प्रतिफलन से भगवती गंगा की शोभा उज्जवल फेन की समान बहुत ही सुंदर लग रही है। वही गंगा जब भगवान के सिर में आती है तो वह गंगा जी मानो चमकती हुई एक सुनहरला लकीर के समान भगवान शंकर की जटा में समा जाती है। जटा में भगवान शंकर उसको लपेट लेते हैं। भगवान शंकर में के जटा में जब गिरती है तो प्रीखत लघुदृष्ट शिरसिते, बहुत छोटी सी तारा के समान वह टिमटिमाने लगती है। वही गंगा के द्वारा जिस सागर को कुपित होकर अगस्त ऋषि ने पी लिया था, जो सागर खाली हो गया था, उस गंगा के प्रवास से पूरा सागर भर जाता है और उस समुद्र के द्वारा ये जगत द्वीपाकार रूप में परिणत हो जाता है। तव दिव्य अपुह धृत महिमम, आपके महिमा के विषय में क्या कहना, आपकी बड़ी दिव्य महिमा है। यह तो एक ऐतिहासिक पौराणिक तथ्य है। इधर हम विचार करें कि जो ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा का जब अवतरण हुआ, ज्ञान गंगा का अवतरण श्रुति के अनुसार ज्ञानम इच्छित शंकरा, भगवान शंकर से ज्ञान की इच्छा करनी चाहिए। ये सगर जीव ही सगर है, गरेण सहित सगर, गर बोलते हैं जहर को, वासनाओं का जो जहर है जिससे मनुष्य पीड़ित रहता है, तो अविद्या कामना वासना ही तो जहर है, इसके साथ यह जीवात्मा पैदा होता है। ये 60,000 पुत्र ये हमारे मन की अनंत वृत्तियां हैं, इन अनंत वृत्तियों से मनुष्य हमेशा परेशान रहता है। महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, सारे वृत्तियों को के निरोध से ही जीवात्मा परमात्मा का मिलन होता है। जो अनादिकाल से जीव और ब्रह्म के बीच में वासनाओं का खाई बना हुआ है, उस खाई को यह वेदांत जीव ब्रह्म का ऐक्य ज्ञान पाटने का काम करता है। यह जीव ही सगर है, मन के अनंत वृत्तियां ही 60,000 पुत्र हैं, और जब मनुष्य ऋषि महर्षियों का आश्रय लेता है, सदगुरु का, वही कपिल महर्षि हैं, उनसे प्रेरित होकर के भगवान शंकर से दिव्य ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। श्रेष्ठाचार्य जी कहते हैं, श्रेष्ठाचार्य जी महाराज का यह कथन है, तत्मस्यादि वाक्योत्थम सम्यक् जन मात्रतः अविद्या सहकारेण नासीत अस्ति भविष्यति। तत्मस्यादि से उत्त जो ज्ञान है, वह ज्ञान अविद्या को समाप्त करके स्वरूप को प्रकाशित करता है। यह जो ज्ञान है, इसी ज्ञान के द्वारा जीव परम शांति को उपलब्ध होता है। दूसरा कोई भी साधन नहीं है जो परम शांति को उपलब्ध करा सके। आगे विचार करते हैं दूसरे श्लोक के ऊपर।
3: रथोणीयंता सतधृतिरगिन्द्रो धनुरथो रथांके चंद्रार्को रथचरण पाणीशर इति दिधोस्ते कोयम् त्रिपुण त्रिणमाडंबर विधि विधेयै क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुधिय।
2: पृथक छोणी यंता, अब यहां पर ज्ञान गंगा के महिमा को बतला रहे हैं। ज्ञान होने पर क्या होता है? इधर एक बड़ा भारी त्रिपुरासुर है, भोगी और योगी दोनों ही तपस्या करते हैं। भोगी की तपस्या का लक्ष्य होता है शक्ति संचय करके भोग करना, साम्राज्य को बढ़ाना, और योगी तपस्या करता है, वह तपस्या से ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता है। जैसे किसी के पास बहुत धन हो, यदि वह सत्संगी है, विवेकी है, ज्ञानी है, तो उस धन का सदुपयोग करता है, सुंदर धर्मशाला बनवाता है, स्कूल बनवाता है, मठ मंदिर संतों के सेवा में लगाता है, और वह उस धन के द्वारा दिवाचन करके परम गति को प्राप्त करता है। और वही धन किसी अविवेकी के पास ना समझ के बात है, तो वह अय्यासी पूर्वक जीवन बिताता है और भोगे रोग भयम, अनेक प्रकार के रोगों में उसके धन खर्च होते हैं, केस मुकदमे में खर्च होते हैं, जुआ शराब में खर्च होता है, क्लेश में, कलह में, लड़ाई झगड़े में खर्च करता है। कोई दान के लिए आए थे, कौड़ी नहीं दे पाता है, परंतु ये काले कोट वाले को जो यमराज के दूत है, इनको जो है हमेशा वह अपने धन को उसी में खर्च करता है, अर्थात दुरुपयोग में अपने धन को लगा देता है। एक ही धन है, ज्ञानी सदुपयोग करता है, धन से परमार्थ को सिद्ध करता है, परमार्थ के साधन में लगाता है, और जो अज्ञानी है उस धन के द्वारा अय्यासी पूर्वक जीवन बिताता है। स्वयं वेदव्यास भगवान कहते हैं, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रिया कलहेन वत। धन ही नहीं, अपने आयु का ज्ञानी सदुपयोग करता है तो अज्ञानी दुरुपयोग करता है, निद्रिया कलहेन वत। आप लोग भगवान कृपा से इससे मुक्त हैं। 4 बजे उठ जाते हैं, उठकर जल्दी स्नान करके नित्य कर्म करके 7 बजे प्रेमपुरी पधार जाते हैं। अन्यथा विवेक न होता तो आप 8 बजे तक सोते और 9 बजे तैयार होके सीधा ऑफिस में दौड़ते। जैसे एक मुमुक्षु तपस्या करता है, वैसे एक व्यापारी भी करता है। जो व्यापारी तपस्या करता है, उस व्यापारी की तपस्या का लक्ष्य होता है अधिक से अधिक धन कमाना व्यापार ही बड़ा भारी कष्ट होता है, पर वो जो कष्ट तपोमय है उसके द्वारा मात्र धन संचय करता, धन भी भोग के लिए, न वह उससे दान करता है न दिन भी गरीब की सेवा करता है, तो दोनों में इतना ही फर्क है। इधर यहां पर भी एक बड़ा भारी जो असुर है जिसका नाम है त्रिपुरासुर, त्रिपुरासुर तपस्या करता है और तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करता है। उसके वरदान का एक ही लक्ष्य है, लक्ष्य वह यह है कि मुझे तीनों लोकों पर शासन करना है, परंतु वह तपस्या करके जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो प्रसन्न कर लेने के बाद ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तू वरदान मांग, तो ब्रह्मा जी से वरदान में वह मांगता है कि मैं अमर हो जाऊं, मेरे किसी से मौत न हो। आसुरी प्रकृति वाले को मौत से बहुत भय लगता है, सबसे पहला उनका मांग होता है अमरता का। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स, अमर बनाना मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, अमर तो केवल तत्व ज्ञान से हो सकते हैं, क्योंकि जो जन्मता है वह मरता है, ये प्रकृति का सिद्धांत है, जो मरेगा तो जन्मेगा, जो जन्मता है सो मरता है, इसलिए तू दूसरा वरदान मांग ले। त्रिपुरासुर विचार कर अमर के समान वरदान मांगता है कि आप कृपा से हमें ऐसा तीन महल दीजिए, विमान बनाइए, जो देवताओं से मनुष्यों से असुरों से अभेद्य हो और उसका भेदन भी हो, तो तीनों एक साथ हो तभी जाके भेदन हो सके। एक लौह में विमान, दूसरा चांदीमय, तीसरा स्वर्णमय, तीन विमान वरदान में मांगता है। उस विमान पर सवार होकर त्रिपुरासुर तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा देता है। सारे देवता भाग खड़े हुए कंदराओं में जाकर तपस्या करने लगे। एक छत्र ब्रह्मांड में साम्राज्य स्थापित हो गया। देवता लोग भग कर कैलाश जाते हैं, भगवान के चरणों में जी कर प्रार्थना करते हैं, महादेव त्राही माम त्राही माम। त्रिपुरासुर पूरे संसार में आतंक मचा दिया है, आप कृपा करके इसका बल कीजिए, इससे हमें निजात दिलाइए। त्रिपुरासुर सबसे पहले देवताओं की, ब्राह्मणों की पूजा बंद करा दी, यज्ञ याग बंद करा दिया और कहा कि मत्तः परतरम को अन्य, मेरे से भिन्न दूसरा कोई नहीं है, मैं ही एक सबकी आत्मा ब्रह्म ईश्वर हूं, मेरे से भिन्न दूसरा कोई भी ईश्वर नहीं है। सबको ऐसा उपदेश करके यज्ञ याग सत्कर्म से सबको निवृत्त करा दिया। जब देवताओं ने अपनी पीड़ा महादेव को सुनाई तो महादेव देवताओं को आश्वासन देकर विदा करते हैं और स्वयं ही त्रिपुरासुर के संहार के लिए पधारते हैं। रथोणी यंता, इस त्रिपुरासुर के संहार के लिए, क्योंकि उसका विमान कभी भी कहीं भी जाता है सबसे अभेद्य है, इसलिए उसके अनुरूप ही एक जो है रथ की तैयारी करते हैं। पृथ्वी को तो रथ बनाया, ब्रह्मा जी सारथी बने, सुमेरु को धनुष बनाया और रथ के पहिए चंद्रमा और सूर्य हुए। रथ चरण पाणि जो भगवान विष्णु है वे सर बने। इस प्रकार से त्रिपुरासुर तिनके को भगवान ने आडंबर खेल खेल में ही समाप्त किया। भगवान स्वतंत्र है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी अन्य देवताओं को, पृथ्वी को महत्व देने के लिए, ब्रह्मा जी को, विष्णु को, सूर्य चांद को महत्व देने के लिए ही इस प्रकार से लीला की। जब भगवान ने अट्टहास किया, उनके अट्टहास से ही तीनों पूर्व खलक्कट एक हो गए। जैसे एक हो गए वैसे भगवान शंकर ने तत्काल बाण का अनुसंधान किया और उसे विद्ध होकर तीनों पूर्व में आग लग गई, त्रिपुरासुर का नाश हुआ। या तो एक पौराणिक तथ्य है, आइए विचार करते हैं आध्यात्मिक रहस्य के ऊपर। ये जीव ही त्रिपुरासुर है, ये जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है यही समझो तीन पूर है, और इसमें जो भोग बुद्धि रखता है वही भोगाभिमान जीव त्रिपुरासुर है, और इसका नाश तभी होता है जब तीनों एक सीधी लाइन में हो, मतलब मनसा वाचा कर्मणा। ये तीन पूर है, कर्मणा अपने शरीर से निष्काम कर्म करें, या जो है भगवत भक्ति करें, देवाचरण करें, माता की पार्वती के समान सेवा करें, पिति देव भव पिता को साक्षात माधव माने, आचार देव भव गुरु आचार को देवता समझें, इस प्रकार से शरीर के द्वारा क्रिया निष्पन्न करता है। यत यत कर्म करो में तत्तद अखिलम संभो तबाराध, और मन से भी तदनुसार ही स्मरण करता है, भगवान के नाम को उच्चारण करना, मन से चिंतन करना, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना, प्रवचन करना। जब मनसा वाचा कर्मणा एक हो जाता है तब जाकर के इस तीनों पूर्व का भगवान शंकर ज्ञान के द्वारा भेदन कर देते हैं। देहत्रय के नाश से ही हमेशा के लिए ये मुक्त हो जाता है। यही आध्यात्मिक त्रिपुरासुर का रहस्य है। आज से लगभग 50 वर्ष पहले एक बड़े भारी करोड़पति थे, उन्होंने एक बड़ा सुंदर धर्मशाला बनवाया, अन्य क्षेत्र खोले, एक विद्यालय भी खोला, उसमें ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ा करते थे, वेदाध्ययन चलता था। कोई भी दरवाजे पर आता था वह खाली हाथ नहीं लौटता था, ये सनातन धर्म है, अतिथि आए तो खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, अतिथि देवो भव। यदि अतिथि घर से लौट जाता है तो पापम दत्वा पुण्यम आदाय गच्छति, अतिथि अग्नि रूप से घर में प्रवेश करता है, अतिथि का स्वागत नहीं किया गया तो आपके सुकृत को ले जाता है और दुष्कृत को छोड़कर जाता है। इसलिए अतिथि को देवता मान करके हमेशा शेठ की पूजा किया करते थे। कुछ काल तक चलता रहा, जैसे ही पिताजी का शरीर छूट गया शेठ जी का, कुछ काल तक बच्चों ने भी चलाया, परंतु कालांतर में बच्चों ने पुनः क्षेत्र बंद कर दिया। धर्मशाला के लिए भी कुछ उसमें भी नियम लगा दिया, रसीद काटना शुरू कर दिया कि एक कमरे का कम से कम 100 रुपया है। एक महात्मा गुजरे जो उसके पिता के गुरु लगते थे, उन्होंने पूछा कि बच्चों तुम्हारे पिता ने इतना सुंदर विद्यालय खोला, धर्मशाला बनाया, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परंतु इस धर्मशाले में तुम लोग 100 रुपये की रसीद किस बात की काटते हो, क्या कुछ व्यापार में घाटा तो नहीं लगा? बच्चों ने कहा महाराज जी आप बात ठीक कहते हैं, कोई हमें व्यापार में घाटा नहीं, व्यापार और पहले से बढ़ गया, पैसे भी काफी हो गए, पर ये 100 रुपया जो हम लोग लेते हैं ना मेंटेनेंस के हैं, क्योंकि 100 रुपया नहीं लेंगे तो मेंटेनेंस कैसे होगा, ये व्यवस्था के लिए है। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे पिता एक पैसा नहीं लेते थे, कोई भी आए उसे धर्मशाला में जगह देना, उसका स्वागत करना, उसके भोजन की व्यवस्था करना और सत्संग सुना करते थे। ये भोग वृत्ति का लक्षण है कि जब आदमी के अंदर भोग वृत्ति आती है तो वह अपने पिता पितामह पैतृक के संपत्ति का भी सदुपयोग नहीं करता है, बल्कि उसका भी वह दुरुपयोग करता है, उसमें से भी कुछ कमाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है। यही भोग और योग में अंतर है। इसीलिए हमारे जीवन में ये जब तक त्रिपुरासुर रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। त्रिपुरासुर का अर्थ भोग वृत्ति, और भोग वृत्ति को मिटाने का एक ही रास्ता है कि हम अपने जीवन में विवेक को, ज्ञान को जगह दें। और विवेक ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए कोई न कोई अवलंबन होना चाहिए। जैसे आपको विद्युत को जानना है तो विद्युत को जानने का अवलंबन है, चाहे आप ट्यूबलाइट लाइट से जाने या पंखे से जाने या कूलर से जाने या फ्रिज से जाने, जिससे सारे यंत्र संचालित हो रहे हैं, जिससे दूर दूर तक ध्वनि जा रही है, प्रसारित हो रही, वही विद्युत है। जिससे लाइट प्रकाश कर रही वही विद्युत है, जिससे पंखे चल रहे हैं वही विद्युत शक्ति है। माध्यम अनेक हो सकते हैं परंतु पावर एक है। ऐसे चाहे भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, श्याम सुंदर की उपासना करें, या भगवान शंकर की, या भगवान विष्णु की, या भगवती दुर्गा की, किसी की भी, सुधाया पानम अमितत्व हेतु हो। सुधा का पान ही अमितत्व का हेतु है। चाहे पात्र सोने का हो, चांदी का हो या लकड़ी का हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे हमें उपासना करना चाहिए, साधना करना चाहिए, चाहे किसी भी देव का हो। उपासना करने से अंतःकरण निर्मल होता है। ज्ञानम उत्पयते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। जब पापीय कर्म उपासना से क्षीण हो जाते हैं तो अपने आप निर्मल अंतःकरण में ज्ञान गंगा का अवतरण होता है। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया, शेष बात कल विचार करेंगे। प्रेम से बोली सच्चिदानंद भगवान की जय।
4: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Vaidik Shanti Mantra presented by Swami Sri Ariharananda Sagarji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
5: Tattva Jigyasu Sajjano, hum log वैदिक शांति पाठ के यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद के यश्चंदसा मृषभो इति क्रम से तृतीय शांति पाठ के ऊपर विचार कर रहे हैं। उच्चारण करते हैं।

तो सज्जनों, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि उपनिषद के जो अध्येता है, जब वो स्वाध्याय पाठ करने बैठते हैं तो मेधा स्मरण शक्ति के अभाव में जो श्रुत ग्रंथ है उनका विस्मरण हो जाने का जिसके अंदर दोष है, तो वो दोष के कारण उपनिषद का श्रवण नहीं हो पाता है, और श्रवण नहीं होने से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो अतः मेधा सिद्धि के लिए, स्मरण शक्ति के लिए यहां जप मंत्र बताए जा रहे हैं। प्रणव के लिए प्रणव से प्रार्थना की जा रही है। कैसे प्रणव से प्रार्थना की जा रही है? तो कहा, जो वेदों में ऋषभ है, वेदों में जो श्रेष्ठ है, और जो विश्व रूप है, विश्व ही जिसका रूप है, और जिसकी उत्पत्ति वेद से हुई है, छंदोभ्यो अध्यमृतात् संबभूव, जो अमृत वेद है, नित्य वेद है, प्रलय पर्यंत रहते हैं इसलिए नित्य जो वेद है, उससे जिसकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा जो ओंकार है वो मेरे को मेधा से संपन्न करे। ये जप करना, ऐसा ये तीन वाक्य का जप करना। ओम यश्चंदसा मृषभो विश्वरूपः छंदोभ्योध्यमृतात् संबभूव स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु। ये जप करना, इससे सज्जनों मेधा की सिद्धि होती है, अर्थात कि ग्रंथार्थ धारण शक्ति बढ़ती है। और ग्रंथार्थ धारण शक्ति बढ़ेगी तो प्रज्ञा बल के सामर्थ्य से ब्रह्म विद्या सुलभ हो जाती है। इसलिए कहा कि जो इंद्र है, जो विश्वरूप है, जो ऋषभ है, जो वेद से उत्पन्न है, ऐसा जो ओंकार है वो मेरे को मेधा से, मेधया यानी मेधा से स्पृणोतु यानी कि संपन्न करे। ठीक है, चलिए मेधा से संपन्न हो गए। उससे आगे भी एक भावना की गई कि अमृतस्य देवाधारण भूयासम, उसी ओंकार से ये प्रार्थना की गई कि हे देवः यानी हे दीप्तिमन प्रणवः अमृतस्य धारणः भूयासम, अमृत को मैं धारण करने वाला हो जाओ, आप मेरे को मेधा प्रदान करें जिस मेधा के फल स्वरूप मैं अमृत को धारण करने वाला हो जाऊं। तो अमृत कोई पदार्थ थोड़ा है कि उसको धारण करना है, धारण करना यानी पकड़ के रखना। तो
तो भाष्यकारों ने कहा कि अमृत का अर्थ है यहां अमृताख्य, मोक्षाख्य साधन आत्मज्ञान। आप मेरे को मेधा प्रदान करेंगे तो मैं उपनिषद का श्रवण करूंगा और उपनिषद के श्रवण से मेरे को आत्मज्ञान होगा तो मैं मोक्ष को प्राप्त कर सकूंगा। इसलिए मोक्ष का जो साधनभूत आत्मज्ञान है उनका मैं धारण करने वाला हो जाऊं। तो इतने ग्रंथ से मेधा सिद्धि हेतु मंत्र बताए गए। अब यहां से आगे जो कहा जा रहा है वो शरीर के अंदर जो रोग आते हैं जिससे हम श्रवण नहीं कर पाते हैं, तो केवल मेधा सिद्धि हो इतना ही नहीं, शरीर भी कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। इसलिए रोगादि राहित्य के हेतुभूत जो मंत्र है वो मंत्र को बताया, जिसका हम लोगों ने संक्षेप से विचार किया, किंतु पुनः मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको इस बात का स्मरण रहे। देखो कहा गया शरीरम में विचर्षणम, ओमकार से प्रार्थना की गई कि मेरा जो शरीर है वो विचर्षणम, ऊपर से लगाना है भूयात, मेरा शरीर विचर्षण हो जाए, यानी कि रोगादि से रहित हो जाए। देखे होता है कि नहीं ऐसा, कुछ शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर हम यहां प्रेमपुरी में आ पाते नहीं, हमारे स्वाध्याय प्रवचन छूट जाता है। तो आने के लिए शरीर की अनुकूलता चाहिए कि नहीं? तो शरीर भी अनुकूल होना चाहिए। इसलिए कहा कि मेरा जो शरीर है वो रोग रहित हो जाए, क्योंकि आपको बताया कि शरीर है वो धर्म का साधन है। और संसार में जो प्रथम नंबर का यदि कोई सुख हो तो क्या है? निरोगी शरीर। गुजरात में कहावत है, पहलो सुखते जाते हैं नर्या। अब यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आपके पास दुनिया भर के पदार्थ है उनका भोग ही नहीं कर पाएंगे। ठंडी की मौसम चल रही है, बढ़िया जो है मेथी, मेथी पाक और उड़द का जो आटा डाल करके बनाते हैं वो अड़दिया पाक बना हुआ है, लेकिन खा नहीं पा रहे। क्यों? ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, या आजकल सबको एक शब्द याद हो गया, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, डॉक्टर कहते हैं घृत ज्यादा नहीं खाना चाहिए, यदि हृदय की ओर जाने वाली नसें यदि बंद हो जाएगी तो अटैक आ सकता है। तो देखो ये खाना अच्छा है कि नहीं, तो कब खा पाएंगे हमारा शरीर यदि स्वस्थ हो तो। इसलिए यहां पर ये भावना की गई कि शरीरम में विचर्षणम, मैं यानी मेरा जो शरीर है वो विचर्षणम यानी कि रोग रहित हो जाए। ठीक है, शरीर भी रोग रहित हो गया, किंतु जो हमारी कर्मेंद्रिया है वो कर्मेंद्रिया भी, उनका जो अपना कार्य है वो कार्य ढंग से करे। ठीक है शरीर स्वस्थ हो, किंतु स्वस्थ शरीर से व्यक्ति जो है, कर्म इंद्रियों से व्यक्ति निषिद्ध कार्य भी कर सकता है। निषिद्ध कार्य के लिए भी शरीर तो स्वस्थ ही चाहिए,
इसलिए कहा कि शरीर स्वस्थ होने के बाद भी हमारे जो कर्मेंद्रिया है वो इसी में ही लगे। इसलिए कर्मेंद्रियों में जो प्रधानभूत जो जिह्वा है वाणी, उसके लिए यहां कहा गया कि मैं जिह्वा मधुमत्तमा, जिह्वा में मधुमत्तमा, मेरी ये जो जीव है, जीव से अभिप्राय है वाणी, जिससे बोला जाए। तो बोलने के लिए क्या चाहिए, जिह्वा चाहिए कि नहीं? तो जिह्वा मेरी मधुमत्तमा, यानी मेरी जीव, मेरी वाणी मधुर भाषिणी हो, मैं बोलूं तो सबको अच्छा लगे, उसको कहते हैं मधुर भाषण। अथवा दूसरी बात यह है कि मधुर भाषण का अर्थ है कि जो मधुर है वो ही बोले। तो कल आपको बताया मधुर क्या है, ये जो वेद, वेद क्या है, मधुर है। भगवान शंकर ने ये जो वाणी बनाई वो कैसी है, मधुस्फीता वाच, मधु से संप्रित, मधु के अंदर डूबो करके बाहर निकाली हुई ये वाणी है। जैसे वो सूरत में एक घारी बनती है, वो घारी को घी में डूबो करके बाहर निकाल दे, चार और घी घी लगा हुआ रहता, वैसे ही जो वाणी है वो भी कैसे हो, मैं जो भी बोलू वो वेद वचन बोलू, ये अभिप्राय, वेद से मेरी वाणी चारों ओर से सराबोर हो जाए, इससे अतिरिक्त और कुछ न बोलू मैं, बस मेरी वाणी के द्वारा वेद पाठ होता रहे। और वेद पाठ से अभिप्राय सत्य वचन यदि कहेंगे तो मैं जो भी बोलू वो सत्य ही बोलू, अनृत कभी ना बोलू। देखो जय किसका होता है, सत्यमेव जयते नानृतम, भारत सरकार ने सूत्र स्वीकार कर रखा, सत्यमेव जयते, सब जानते लेकिन फिर भी असत्य को छोड़ ही नहीं पा रहे। इसलिए असत्य वदन मेरी वाणी ना करे, सत्य वदन ही करे, तो यही है मधुमत्तमा का अभिप्राय है। और इससे आगे अब ज्ञानेन्द्रियों के लिए कहते हैं, कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्णाभ्याम यानी मेरे पास जो दो कर्ण है वो दोनों कानों से मैं भूरि विश्रुवम, भूरि भूरि यानी कि बहुत सुनूं, सुनते सुनते मैं थकू नहीं, हम लोग थक तो नहीं जाते हैं ना? तुलसीदास जी ने कहा नहीं, श्रवण जाके समुद्र समान, हमारा जो कान है कान के अंदर इतना स्पेस होना चाहिए कि सारा समुद्र जैसे भर जाए, समुद्र स्थानीय ये जो वेद की कथा है वो मेरे अंदर भर जाए। कर्ण किसको कहते हैं, कर्ण शशकुली अवच्छिन्न आकाश को, ये जो हमारा कर्ण है ना उसके अंदर जो छिद्र है उसको शशकुली कहते हैं, वो शशकुली से अवच्छिन्न जो अंदर आकाश है खाली जगह उनको कहते हैं कान, है तो बहुत थोड़ा किंतु कितना सुनता है। देखो जब से आंख खोली और सुनना प्रारंभ किया तब से आज तक हम सुनते आ रहे, कितना अंदर गया हुआ है बताओ,
इसलिए कान के द्वारा यदि हम सुने तो वेद वचन सुने और कुछ नहीं। कान का कार्य सुनने का तो है, लेकिन यही जो है कल्याणकारी वचन सुने। अथवा ये जो वेदांत है उनका श्रवण करे, तो श्रवण का अर्थ आप लोग जो है ये मत समझे कि हम यहां करके सुने एक घंटा और सुन करके चले जाए। वो श्रवण सुनना मात्र जैसे हम लोग मानते हैं वैसा सुनने का अर्थ नहीं है। सुनने का अर्थ है, देखो हमारे यहां का शब्द विषयक प्रत्यक्षम, यही सुनना। हम तभी कह सकते हैं कि मैंने सुना, जो सुना है उनका जो अर्थ है वो अर्थ का हमको प्रत्यक्ष हो। शब्द विषयक प्रत्यक्षम, शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ का हमको प्रत्यक्ष हो, तभी हम कह सकते हैं कि मैंने सुना। जैसे रास्ते में कोई व्यक्ति मिल जाता है तो कोई परिचय कराते हैं, तो देखिए उनके शरीर को तो आप पहले से ही देख रहे, उनका जो पिंड है शरीर, उनका जो आकार प्रकार है, उन्होंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, वो गोरा है काला है मोटा है पतला है कि ऊंचा है कि नीचा है, वो तो आप आंख से उनको देख ही रहे। लेकिन जब पूछते हैं कि ये कौन है, तो मित्र बताते हैं कि वो अमुक अमुक व्यक्ति है, तो तुरंत कहते हैं कि हां मैंने पहचान लिया। तो देखिए श्रवण के अंदर ये सामर्थ्य है कि अर्थ को प्रत्यक्ष करा देता है। तो श्रवण का अर्थ है शब्द का प्रत्यक्ष हो जाना। और यहां पर श्रवण किसका है? वेदांत का। वेदांत का हम श्रवण कर रहे, तो वेदांत का जो अर्थ है उस अर्थ का प्रत्यक्ष होना चाहिए। देखो वेदांत का अर्थ क्या है? ब्रह्म। वेदांत में जिसका प्रतिपादन है उनको कहते हैं ब्रह्म। वेदांत से अभिप्राय है गीता उपनिषद और ब्रह्म सूत्र, इन तीनों को क्या कहते हैं? वेदांत। वेदांत का अर्थ है वेद का जो निर्णय, अंत कहते हैं निर्णय को, अंत यानी समाप्ति, अंत कहते हैं समाप्ति। अब जैसे टोटल लगा लिया तब फिर उसके बाद कुछ बाकी रहेगा? वही समाप्ति, वो निर्णय हो चुका। अब देखिए अब ये प्रतियोगिता चलेगी तो उसके बाद जब निर्णय होगा तो कहते कि अब निर्णय हो चुका, अब इसको पुरस्कार बांट दो। तो कहते नहीं अंत यानी कि निर्णय, वेद का जो निर्णय है, वेद का निर्णय क्या है? ब्रह्म। वेद के अंदर किसका प्रतिपादन है? एकमात्र ब्रह्म का। इसलिए आपको बताया था नहीं धर्म

उसको कहते हैं निरपेक्ष रवह शब्द। तो वेद के द्वारा एकमात्र ब्रह्म का ही प्रतिपादन किया गया। तत्तु समन्वयात, इस सूत्र से ये निश्चय किया गया कि सभी वेदांत वाक्यों का तात्पर्य अवसान एकमात्र ब्रह्म में है। तो यदि हम जो है वेदांत को श्रवण करें तो वेदांत का जो तात्पर्य अवसान जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का जो है हमको बोध होना चाहिए, तभी वो श्रवण माना जाएगा। देखिए जो श्रोत्रि ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरु के मुख से जो सुना हुआ वाक्य है, उस वाक्यार्थ विज्ञान को कहते हैं श्रवण। गुरु मुख से वेदाध्ययन, गुरु के मुख से यदि हम वेदाध्ययन करें और वेद का जो अर्थ है उस अर्थ का हमको साक्षात्कार हो, उस साक्षात्कार पर्यंत को कहते हैं श्रवण। केवल कान से सुन लेना मात्र श्रवण नहीं है, किंतु साक्षात्कार भी होना चाहिए। अब भला साक्षात्कार कब होगा? कि वाक्य का बोध हमको हो तभी होगा। देखो कोई व्यक्ति आकर के कोई ऐसी कोई अप्रसिद्ध भाषा में बोले, जैसे जो व्यक्ति अंग्रेजी नहीं जानता है उनके सामने कोई खड़ा होकर के यदि अंग्रेजी बोले तो सुनने वाले को शब्दार्थ बोध होगा कि वो क्या कह रहा है? नहीं होगा। तो वो फिर पूछे कि आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं? ऐसा पूछेगा, सुन रहे हैं? तो जो अंग्रेजी नहीं जानता है वो कहेगा हम सुन तो रहे लेकिन समझ नहीं रहे, ऐसा बोलेगा। वो सुन तो कान से रहे कि आप अंग्रेजी बोल रहे, कुछ ऐसा बोल रहे, लेकिन अर्थग्रह हमको नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में कब आएगा? कि जो सुना हुआ वाक्य है उस वाक्य का जो तात्पर्य है वो समझ में आए। तो वो तभी हो सकता है कि वाक्य के अंतर्गत जो पद है वो पद का अर्थ यदि हमको पता हो तभी वाक्यार्थ बोध होगा। पद का ही ज्ञान नहीं है तो पद का समूह ही तो वाक्य होता है, और पदार्थ ज्ञान नहीं है तो फिर पद का जो समूह है वाक्य, वो वाक्यार्थ बोध भी नहीं होगा। तत्त्वमसि महावाक्य सुना, लेकिन तत् का और त्वम पद का जो तात्पर्य है वो यदि हमने अभी निश्चय नहीं किया है तो तत्त्वमसि महावाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अनुभव नहीं होगा। इसलिए श्रवण का अभिप्राय है तात्पर्य निर्णय होना। और हमारे यहां आचार्यों ने एक तात्पर्य निर्णय एक प्रारूप बनाया हुआ है, उसके अंदर वो वाक्य फिट हो जाए तो निश्चय होगा कि ये वाक्य का ये अर्थ है। वो प्रारूप है उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति। इनको तात्पर्य निर्णायक छह लिंग बोलते। उपक्रमोपसंहारो अभ्यासो पूर्वता फलम अर्थवादोपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, ऐसा मीमांसकों ने माना। उपक्रम और उपसंहार जिसमें देखा जाए, जहां से उपक्रम हुआ उसी में उपसंहार हो, और बीच में बार बार उन्हीं का एक कथन हो, अभ्यास बार बार वही एक ही बात कहना,

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ये हो शनो भो तुपेतायाये हो सयो रबे सवन्तो ना हुवा हो या ओ हो वा ओ पा
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।

नमः सर्वर्तु परिवर्तकाय नमः सप्तजिह्वाय नमः सहस्रार्चिषे नमः स्निग्धाय नमः प्रकृतिदक्षिणाय नमः भूतभव्यभा

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: लेकिन परमात्मा खुद नित्य है, वो सावधिक नहीं है, क्योंकि यावत सावधिक को जजमेंट करने वाला भी सावधिक होगा तो कौन जजमेंट करेगा, वो तो निरवधि ही होना पड़ेगा, इसलिए वो नित्य है, है? अवस्थात्रय का जो साक्षी है उसको नित्य कहते हैं। नित्य किसको कहते हैं? अवस्थात्रय के साक्षी है उत्पत्ति, स्थिति, लय। ये तीनों अवस्था का जो साक्षी होगा वह क्या होगा? नित्य होगा। उत्पत्ति का भी वह साक्षी है, स्थिति का भी साक्षी है, लय का भी साक्षी। और लय का साक्षी भी लय हो गया तो फिर लय का साक्षी कौन होगा? इसलिए एक व्यक्ति जो लय रहित होगा तो उसी का नाम नित्य होगा, उसी का नाम परमात्मा होगा, उसी का नाम ब्रह्म होगा, उसी का नाम आत्मा होगा। यहीं पर तो शून्यवादी लोग मार खा जाते हैं, कहते हैं सर्वम शून्यम, जगत में कुछ भी नहीं है, जगत भी नहीं, जीव भी नहीं, जीवन भी नहीं, आत्मा भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, कुछ नहीं, सर्वम शून्य। बोले परमात्मा भी नहीं, आत्मा भी नहीं, इसका कोई साक्षी होगा कि नहीं? परमात्मा नहीं रहता महाप्रलय में, परमात्मा भी नहीं रहता, इसका कोई साक्षी है कि नहीं? और यदि कोई भी साक्षी नहीं है कहोगे तो महाप्रलय में परमात्मा नहीं रहता, ये बात हम कैसे माने? साक्षी नहीं है तो कैसे मानेंगे? महाप्रलय में परमात्मा नहीं रहता इसका कोई साक्षी है तो वो कौन है? परमात्मा ही है कि अनात्मा है? अनात्मा तो साक्षी हो नहीं सकता। परमात्मा अपने विनाश का, अपना खुद का साक्षी कोई भी नहीं होता है? होता है? अपनी मृत्यु का साक्षी अपने होगा है? अपने विनाश का साक्षी खुद ही होगा? नहीं होगा। साक्षी तो विनाश रहित ही होना पड़ेगा, इसलिए ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा वह सत्य है, साक्षी है। इसलिए अवस्था त्रय का जो साक्षी होगा उसी को कहते हैं नित्य। चतुर्थी है, नमः में चतुर्थी विभक्ति आप लोग ग्रामर पढ़े हो कि नहीं? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी पढ़े हो, भाषा में पढ़े हो। कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, है? कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, अपादान, संप्रदान है चतुर्थी, अपादान है पंचमी। अलग होने और नीचे गिरने अर्थ में पंचमी होता है, किसी को देने अर्थ में चतुर्थी होता है। तो जहां चतुर्थी विभक्ति लगता है वहां देना होता है। तो तस्मै शिवाय क्यों बोलते हैं? शब्द है शिव, नमः शिवाय। तो हम क्या कहते हैं? नमः शिव, शिव को नमस्कार कर रहे हैं। तो शिवाय आय, ये जो विभक्ति है शिव प्लस आय चतुर्थी, यानी इसका अर्थ हुआ शिव को नमस्कार हो, मेरा नमस्कार मैं शिव को दे रहा हूं। ब्राह्मणाय, ब्राह्मण को नमस्कार है। ब्राह्मणाय दक्षिणाम देही, ब्राह्मण को दक्षिणा दो, नौकर को तनख्वाह दो, चतुर्थी नहीं लगेगा वहां, वो तो तनख्वाह है ना, दक्षिणा नहीं है। नित्याय, नित्य प्लस आया, नित्य कौन है, तो भगवान है, क्योंकि वो नित्य है इसलिए उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं, क्योंकि नित्य को नमस्कार करोगे तो फल नित्य मिलेगा। नित्य फल क्या है, मोक्ष, ये नित्य फल है। भगवान यदि मोक्ष देंगे तो सावधिक नहीं होगा, समझे कि नहीं, भगवान जो मोक्ष देंगे वह सावधिक नहीं होगा, लिमिटेशन नहीं रहेगी उसमें, इतने समय के लिए मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं, इतने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, हैं? कितने वर्ष के लिए मुक्ति चाहिए आप, हैं? एक संप्रदाय चल पड़ा था ना यहां, आजकल भी है शायद, ओसो चलता रहा, ओसो है, वो तो अपने आप तो गए, लेकिन है उनका संप्रदाय अभी भी है ओसो। तो हमने जब सुना, ओसो क्या करते थे कि उनके अनुयायियों को संन्यास देते थे, बोले उनका सन्यास की प्रक्रिया क्या थी, बोले सावधिक सन्यास। अब सन्यास भी कई सावधिक होता है, हमको सुनाया किसी ने, सावधिक माने तुमको कितने दिन के लिए सन्यास चाहिए, तो उनके सामने जाकर कहते थे कि 1 हफ्ता के लिए सन्यास दे दो, तो वह लिख कर देते थे 1 हफ्ता के लिए तुझे सन्यास, तो 1 हफ्ता के बाद फिर तो सन्यास छोड़ो, कोई 1 महीना के लिए, कोई 15 दिन के लिए, कोई 1 वर्ष के लिए, ऐसा ऐसा उठपटांग भी होता रहा दुनिया में, अभी भी हो रहा है, होता है सावधिक सन्यास, सन्यास भी कहीं सावधिक होता है, अब ये सब बकवास ही है कि नहीं बोलो। ब्रह्मज्ञान तुमको कब तक के लिए चाहिए, हैं? ब्रह्मज्ञान कब तक के लिए चाहिए तुम्हें, सावधिक बोलो, क्या बात करते हो बाप, समझ में नहीं आता है ब्रह्मज्ञान, तुम्हें मेडिकल साइंस का ज्ञान कितने समय के लिए चाहिए, सावधिक ज्ञान कहीं सावधिक होता है, तुम स्कूल में पढ़ने जाओ और मास्टर तुमसे पूछे तुम्हें क्या चाहिए, बोले मुझे विद्या चाहिए, कितने साल के लिए चाहिए, बोलो सावधिक होता है, क्या बात करते हो, ज्ञान सावधिक नहीं होता, मोक्ष सावधिक नहीं होता। नित्याय, क्योंकि ज्ञान भी नित्य है, ब्रह्म नित्य है, परमात्मा नित्य है, तो ज्ञान भी नित्य है, तो मोक्ष भी, एक बार हो गया तो हो गया, काम खत्म, उसके बाद फिर दोबारे मुक्त होने का कोई प्रश्न नहीं, तो तुम अभी भी मुक्त हो, क्योंकि ज्ञान नित्य है, मोक्ष नित्य है, तुम्हें ये पता नहीं कि मैं मुक्त हूं, तुमको भ्रांति ये हुआ कि मैं फंसा हूं, तुमको भ्रांति ये हुई है कि मैं फंसा हूं, फंसे कहां हो भाई, तो तुम्हारा फंसना काल्पनिक है, ये तो वेदांत सिद्धांत कहता है, तुम्हारा फंसना तुम्हारी अपनी कल्पना है, काल्पनिक है, तुम फंसे कहीं नहीं हो। नित्याय, ये स्वरूप लक्षण है, ऐसे जो नित्य स्वरूप वाले भगवान हैं, शंभु है, परमात्मा है, उनको अयम इयम नति ही, मेरा ये नमस्कार है। और कैसे है वो, त्रिगुणात्मने, ये तटस्थ लक्षण है, ये स्वरूप लक्षण नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो निर्गुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक है तो का मतलब अर्थ हुआ कि माया में विद्यमान जो तीन गुण हैं, उन तीन गुणों का वह प्रकाशक है, तीन गुणों का आत्मा है, माने तीन गुणों का अस्तित्व परमात्मा से सिद्ध है। तीन गुणों का अस्तित्व माया से सिद्ध नहीं है। माया से क्यों सिद्ध नहीं है? माया खुद ही सिद्ध नहीं है तो क्या त्रिगुणों को सिद्ध करेगी? वो माया का अपना खुद का अस्तित्व नहीं है तो तीन गुणों को कैसे सिद्ध कर सकती है? वो माया को अपने अस्तित्व में आने के लिए ही उस परमात्मा का आश्रय चाहिए। परमात्मा के आश्रय में माया अस्तित्व में आई और उसी परमात्मा के अस्तित्व में तीन गुण अस्तित्व में आए। इसलिए तीन गुण के आत्मा, आत्मा माने तीन गुणों को अस्तित्व में लाने वाले कौन है? तो परमात्मा। तुझार ये ऐसी थोड़ा कम कर सकते हो? हाँ, मुझे लगता है कुछ ठंडी ही है ज्यादा। एक दो को बंद कर दो, एक दो को चलाओ, बाकी बंद कर। सोफोकेशन बढ़ेगा, सब बंद करो। हाँ, एक दो चलाओ, बाकी बंद करो। हाँ, तो एक दो चलाओ, चलाना पड़ता है। वो एडजस्टन करेगा ना, फिर हवा अंदर का जो सोफोकेशन है बाहर फेंकेगा। हाँ, बस बस।
2: नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते,
1: पुरजिते का अर्थ हुआ त्रिपुरासुर को जिसने जीता है। पुरजिते, पुर को जीता। कितने पुर हैं? तीन पुर हैं। तुम क्या हो? त्रिपुरासुर हो तुम, और हम क्या हैं? हैं? तुम और हम त्रिपुरासुर हैं भाई। मनुष्य समझते हो तुम लोग? तुम और हम त्रिपुरासुर हैं। एक राक्षस हुआ नहीं, सुना हुआ है ना? उसने तपस्या की, बड़ा भारी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम वरदान मांगो, तो उसने कहा कि मैं कभी भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा वरदान तो किसी का दिया हुआ नहीं होता है। तुमको मृत्यु से डर लगता हो तो आत्मानंद से वेदांत तो पढ़ो। ब्रह्म विद्या ही तुमको मोक्ष दे सकता है। मुक्त हुआ हुआ जीव ही मृत्यु से पार होता है, उसको मरना नहीं पड़ेगा। तो मरना न पड़े ये अवस्था तो ज्ञान से ही होता है। तमेव विदित्व अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, श्रुति ने कहा है ना, ज्ञान देव तु कैवल्यम। वो ज्ञान से ही होगा। बोले महाराज ज्ञान हमारी बस की बात नहीं है, असुर है तो कहां से ज्ञान आएगा उसको? ये ज्ञान साधना हमारी बस की बात नहीं है महाराज। तो क्या चाहते हो? बोले फिर भी हमको मृत्यु से डर लगता है, हैं? मरना न पड़े, कोई उपाय वरदान दो। बोले बेटा देखो, मरना न पड़े ये तो मोक्ष ही होगा, ज्ञान से ही होगा। मरना तो पड़ेगा पड़ेगा ना, तुम अपने बुद्धि लगाओ, निमित्त मृत्यु मांगो। ऐसा हो तब मेरी मृत्यु हो, अन्यथा न हो। इसको बोलते हैं निमित्त मृत्यु। ऐसा हो तो मृत्यु हो, अन्यथा मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम निमित्त मृत्यु मांगो। उसने बड़ा बुद्धि लगाया। तो इसका मतलब यह है कि मुझे तीन रथ दे दो, मुझे तीन रथ दे दो। एक लोहे का रथ, दूसरा तांबे का रस तामा, और तीसरा सोने का रस। ये तीन रथ मुझे दे दो, और तीन रथ में मैं उड़ता रहूं, रथ में ही घूमता रहूं अंतरिक्ष में, आकाश में। घूमता रहूं फिरता रहूं। और ये रथ तीन रथ कभी भी हमने सामने ना आवे, लाइन से हमने सामने ना आवे, एक रथ उधर है तो दूसरा उधर, तीसरा उधर है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है 24 घंटे में केवल एक मुहूर्त के लिए आमने सामने आएंगे हैं, बाकी ये तीनों रथ एक दूसरे विपरीत घूमते रहेंगे, आमने सामने केवल एक मुहूर्त के लिए आएंगे। आगे उसने सोचा नहीं, एक मुहूर्त के लिए आमने सामने आता है तो कोई हर्जा नहीं है। अब क्या मांगते हो वरदान बोलो? बोले तीन रथ को अप्रसिद्ध कभी कहीं किसी ने न सोचे हुए हथियारों से कोई यदि तीनों रथ को एक ही बार तोड़कर नष्ट करता है, भेदन करता है, तब मेरी मृत्यु हो अन्यथा न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु, क्योंकि ये विश्व सृष्टि में परमात्मा के लिए माया का आश्रय लेने वाले परमात्मा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं? इस विश्व सृष्टि में माया का आश्रय लेने वाले परमात्मा के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने माया के बारे में कहा है, मायायाम सर्वसंभव, माया है तो कुछ भी हो सकता है, बस असंभव कुछ भी नहीं है माया में। मायायाम सर्वसंभव, इसलिए माया के बारे में और दूसरी जगह शंकराचार्य जी ने अघटित घटना पटी ऐसी माया, कभी किसी के द्वारा सोचा भी नहीं गया हुआ भी वह घटना को घटित करके दिखाने की क्षमता किसमें है? माया में है। और उस माया का आश्रय लेगा कौन? तो परमात्मा। और जब परमात्मा उस माया का आश्रय लेगा तो उसके सामने असंभव कुछ होगा नहीं। लेकिन यहां तक तो उसकी बुद्धि गई नहीं असुर की, उसने तो विचार किया कि असंभव अप्रसिद्ध हथियारों से है? प्रसिद्ध हथियार नहीं, प्रसिद्ध हथियार तो यही धनुष बाण और तीर बंदूक गोले तोप यही ना है, और एक ही तीर से तीनों रथ को तोड़ सके एक ही बार में, तब जाके मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी को तो पता था कि असंभव कुछ भी नहीं है, तथा अस्तु तेरी इच्छा अनुसार ही तेरी मृत्यु हो, ठीक है तेरी मृत्यु हो तो इसी तरह हो। अब तीन रथ दे दिया, लोहे का रथ, तांबे का रथ और सोने का रथ दे दिया, और तीनों रथ में वह विचरण करने लगा, कभी लोहे के रथ में घूमता है, हैं? तुम अभी कौन रथ में घूम रहे हो? ए त्रिपुरा सुरो है लोहे का रथ में है, ये शरीर जो है लोहे का रथ है, ये देखो तुम्हारे में तीन पूर है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन शरीर ही तीन पूर हैं। और इस शरीर में घूमने वाले हम जागृत में स्थूल शरीर में, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर में, और सुषुप्ति में कारण शरीर, और कारण शरीर सुषुप्ति से जगते हैं तो या स्वप्न में या फिर जागृत में स्थूल शरीर में, एक ही बार तीनों शरीर में तो हम रह नहीं सकते, इसमें रहे तो उसमें नहीं, उसमें रहे तो उसमें नहीं, उसमें रहे तो इसमें नहीं, तो यही त्रिपुरासुर का लक्षण है, ये जीव भाव ही त्रिपुरासुर है, समझे कि नहीं? हमारी जो जीव भाव है वही त्रिपुरासुरपना की भाव है, और ये जीव भाव का छेदन करेगा कौन? जो इस तीन पुरों का नाश करेगा तभी जाकर हमारा जीव भाव नाश होगा, समझे कि नहीं। तीन पुरों में अहम बुद्धि जब तक रहेगी जीव भाव नष्ट होगा। स्थूल शरीर में जन्म मृत्यु का भाव, सूक्ष्म शरीर में भूख प्यास कर्ता भोक्ता का भाव, सुषुप्ति शरीर में मूर्खता का भाव, अज्ञानता का, मूर्खता, मैं कुछ नहीं जानता। जब पूछो तुम जानते हो, बोले नहीं जानता। ले जी, परमात्मा को जानते हो, बोले नहीं जानता। अपने को जानते हो, बोले नहीं जानता। ले जी, यही तो मूर्खता का भाव। तो ये त्रिपुरासुर का भाव है। शिव महिमने स्तोत्र में पुष्पदंताचार्य जी ने बड़ा सुंदर ढंग से त्रिपुरासुर के वध के बारे में एक श्लोक ही तैयार किया है। रथ छ्योणी यंता

0: स्थूल शरीर को तो तोड़ता है, लोहे के रथ को तो तोड़ता है यमराज, लेकिन इसके अंदर जो दो रथ हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, वो यमराज तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए जीव रूपी त्रिपुरासुर बचा ही रहता है, मरता ही नहीं है। फिर दोबारे रथ तैयार कर लेता है वो, फिर तैयार दोबारे रथ तैयार कर लेता है, फिर घूमता है। अब ये तो देखो, पहला कारण शरीर को नाश किए बिना।
1: ओम नमः शिवाय।
2: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
1: ओम नमः शिवाय।

0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shiva Mahimna Stotra in Hindi, presented by Swami Sri Dharmanandiji. Thank you. Om Namah Shivaya.
1: Ki jis dhan ko va 10 varsh mein prapt kar sakta usko kehta ek varsh ke andar hi hona chahiye. जो काम 20 वर्ष में उसको 10 वर्ष के अंदर करना चाहता है, क्योंकि हमने संसार के विषय को, पदार्थों को, धन को इतना महत्व दे दिया है कि सब कुछ छोड़कर उधर तत्परता से, स्थिरता से लग जाते हैं। वैसी स्थिरता, तत्परता भगवान के भक्ति में हो तो भगवान तत्काल दर्शन दे देते हैं, हमारी स्थिरता में ही कमी होती है। तो यहां पर बताया कि किस प्रकार रावण ने व्यष्टि को समष्टि में विलय किया। ये जो व्यष्टि मतलब कि हमारे आंख है, आंख का तेज सूर्य का अंश है, कान में श्रवण इंद्रिय है या आकाश का अंश है, दिग देवता का अंश है। तो सारे देवताओं को जो व्यष्टि अंश है, इस व्यष्टि को समष्टि में मिलाना ही ये भक्ति है। यही भक्ति रावण ने किया। अपने आप को रावण ने सर्वात्म रूप से चिंतन किया, शिव में चिंतन किया, जिसे प्रसन्न होकर भगवान उसे तीनों लोकों का अधिपति बना दिया। फिर भी रावण को अहंकार हो गया, क्योंकि मन को समर्पित नहीं किया था। यह बात आपको 12वें श्लोक में बतला रहे हैं, उच्चारण करने पहले। अमुष्य त्वत्सेवा समधिगत सारं भुजवनम् बलात् कैलासेपि त्वदधिवसतो विक्रमयत अलभ्यापाताले प्यलसचलितंगुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मूयति खल। त्वदधिवसतो कैलासे, भगवान शंकर हमेशा कैलाश पर निवास करते हैं। कैलाशे पी त्वद अधिशतौ अपि त्वद सेवा समधिगत सारम। कैलाश पर जहां भगवान शंकर नित्य विराजमान रहते हैं, वहां पर भी त्वद सेवा समधिगत सारम, आपकी सेवा से जिस रावण ने भुजवनम, 20 भुजाओं का एक बन प्राप्त किया, बलात् मतलब कि अत्यंत बहादुरी के साथ, विक्रम यत मतलब कि उस कैलाश पर्वत को अजमाने लगा। अमुष्य उस रावण को, त्वयि मतलब आपके, अलस चलित अंगूठ शिरसि, आप जरा सा अलसाए हुए अंगूठे से दबा दिए। इसके बाद क्या हुआ, पाताले अपि प्रतिष्ठा, पाताल में भी प्रतिष्ठा मतलब टिकाव, अलभ्या नहीं मिला, आसित खल उपचित ध्रुवम मुयति, जो खल है वह समृद्ध होने के बाद अवश्य ध्रुवमल अवश्य मुयति, उपकारी को भूल जाता है। तो इस श्लोक में रावण के विषय में बतला दिया किस प्रकार रावण मुग्ध हो गया। व्यवहारिक जीवन में भी जब मनुष्य को ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो वह मुग्ध हो जाता है, माता पिता गुरु का भी तिरस्कार।

0: कर देता है, जिसके द्वारा लालित पालित हुआ, शिक्षित हुआ, इतना बड़े उच्च पद को प्राप्त किया, परे अहंकार ऐसा है ना कि अंधा बना देता है। इसी बात के श्लोक में बताया कि भगवान शंकर कैलाश पर निवास करते हैं, मां भगवती पार्वती बाजू में बैठी हुई हैं। रावण पहुंचा, पहुंचने के बाद सोचा कि अब सारे दुनिया में कोई भी मेरे से लड़ने को तैयार नहीं, जरा चल के एक बार भगवान शंकर को अजमा लें। तो वहां जाकर जैसे ही हिमालय को वो सोचा कि जरा देखता हूं कितना इसमें बल है। उधर पार्वती जी बाजू में बैठी थी, जब रावण ने उठाना चाहा कैलाश पर्वत को तो जरा कंपन हुआ, कंपन होती पार्वती जी तुरंत भगवान शंकर को पकड़ ली। पार्वती जी ने कहा ये क्या हो रहा है, इतना भूकंप आ रहा है या कोई ज्वालामुखी फट रहा है, अचानक ये क्या हो रहा, आप यहीं बैठे हैं और ये दूसरा कौन संहार कर रहा, संहार के देवता आप है, आपसे भी कोई बड़ा देवता तो नहीं बन गया जो कि इस हिमालय के ऊपर जो है आपका कैलाश उसको भी उठाना चाह रहा है। भगवान शंकर समझ गए, मुस्कुराए, बोले कि वही जो तेरा चेला है ना रावण, रावण जो है जरा अपने बल को अजमा रहा, परंतु भगवान की अंगूठा हिलाते ही बेचारा पाताल लोक पहुंच गया, वहां भी उसको कोई शरण नहीं दिया। तो देखिए कैलाश शब्द का अर्थ यदि विचार करें शब्द के ऊपर, कई गई शब्द है, शब्द मतलब शब्द अर्थ में धातु है, कई गई शब्द धातु है, कई शब्द गई शब्द शब्द अर्थ में ये धातु का प्रयोग होता है। और लास शब्द का अर्थ होता है रलयोर अभेद, रकार लकार का भेद होता है। तो रास रस एव रास, श्रुति कहती है रसो वैश, रस परमात्मा है जो ब्रह्मानंद है, तो रस एव रास। तो कैलाशे का अर्थ है ब्रह्मानंदे, जैसे उपनिषद में ब्रह्मलोक शब्द आता है तो भगवान शंकराचार्य व्याख्यान करते ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक, ब्रह्म अलग लोक अलग दो चीज नहीं बल्कि ब्रह्म वही लोक है। यहां पर भी कैलाशे का अर्थ है जो औपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्मानंद, उसी का नाम है कैलाश। उसी ब्रह्मानंद में भगवान शंकर हमेशा रमण करते हैं या तद्रूप है। कैलाश शब्द की बड़ी भारी महिमा है, जहां पर कैलाश वहां पर भगवान शंकर अपने आप विराजमान होते हैं। ऋषिकेश कैलाश की भी ऐसी ही कुछ घटना है, बहुत कम लोगों को मालूम होगी। कैलाश आश्रम के आदि महाराज जिनका नाम था धनराज गिरी जी महाराज, करीब 150 वर्ष पुरानी घटना होगी। तो आदि महाराज उस समय पंच कुटिया बनाकर रहते थे, स्वाध्याय करवाते थे वेदांत का। उन्हें रात में दो बार तीन बार सपना हुआ, सपना में महादेव ने संकेत दिया, वह संकेत था हरिद्वार के सेठ भारामल बगीची, कनखल के अंतर्गत पड़ता है, हरिद्वार में कनखल एक क्षेत्र का नाम है, कनखल में भारामल सेठ की बगीची थी, उस बगीची का दृश्य था सपने में। और भगवान बार बार कह रहे थे कि तुम मुझे यहां से उठा ले जाओ, क्योंकि गंगा के प्रवाह से ये मेरा लिंग बहने वाला है। एक बार दो बार तीन बार सपना हुआ, ध्यान नहीं दिए, बोले सपना ऐसे होता रहता है। जब बार बार हुआ तो आदि महाराज धनराज गिरी ने सपने में ही कहा कि देखिए महादेव, मैं तो हूं विरक्त सन्यासी और मैं आपको ले आकर के स्थापना कर दूंगा, आप कौन आपकी आरती पूजा करेगा, कौन भोग लगाएगा, ये कहां से इतनी व्यवस्था होगी। भगवान शंकर ने स्वप्न में ही निर्देश दिया कि तुम इसकी चिंता मत करो, तुम मुझे ले जाकर स्थापना कर दो, केवल वेदांत सुनाना और सारी व्यवस्था का भार मेरे ऊपर छोड़ दो। जब भगवान शंकर ने ऐसा आश्वासन दिया स्वप्न में, तो जैसा स्वप्न हुआ था वैसे ही 10-12 महात्माओं को लेकर के धनराज गिरिज महाराज पैदल चल पड़े। उस समय इतने साधन नहीं थे और पैदल चल करके ऋषिकेश से हरिद्वार पहुंचे, करीब 24 किलोमीटर है। और आकर देखते हैं सपना के आधार पर तो वही भारामल के बगीची में गंगा जी के प्रवाह से वह पूरा जो मंदिर था गिर चुका था और शिव पिंडी के पास से गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। विधि विधान से स्वस्ति वाचन करते हुए अपने कंधे को उठा करके आदि महाराज महादेव को ले जाकर ऋषिकेश में जहां कैलाश आश्रम स्थापित कर दिया। उनका नाम रखा अभिनव चंद्रेश्वर महादेव। जब किसी मंदिर में भगवान शिव की प्रतिष्ठा होती है या राम की किसी देवता की तो नाम संस्कार करना पड़ता है, तो उनका नाम रखा अभिनव चंदेश्वर महादेव। और आदि महाराज का नियम था कि उन्हें हर दिन जो है वेदांत श्रवण कराना, वेदांत श्रवण कराते थे और महादेव की जिम्मेदारी बन गई थी सारी व्यवस्था संभालना। यह आज भी कैलाश की विशेषता है, आप जाकर प्रत्यक्ष देख सकते हैं कि कैलाश आश्रम में कम से कम 100 महात्मा अंदर रहते हैं और इससे ज्यादा बाहर से महात्मा आते हैं, हमेशा वेदांत का स्वाध्याय चलता रहता है। और उसी महादेव का ऐसी प्रताप है कि उस संस्थान से बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं। अभी डालमिया जी 3-4 रोज पहले मिले थे, बोल रहे थे कि कैलाश आश्रम सन्यासियों की विद्वानों की फैक्ट्री है, जैसे फैक्ट्री माल निकलता है ना। अब आप देख लो चिन्मयान जी महाराज भी कैलाश के आचार्य जो तपोवन स्वामी थे उनसे वेदांत अध्ययन किए थे, विवेकानंद जी तो साक्षात आदि महाराज से वेदांत का श्रवण किए थे। जितने ही बड़े बड़े महापुरुष इस जमाने के हैं अक्सर प्रायः जरूर वहां साक्षात या परंपरा से जरूर ही जुड़े होंगे। उसी परंपरा में स्वनाम धन्य पंचम पीठाचार्य प्रेमपुरी जी महाराज हुए हैं और जो कैलाश आश्रम में बिल्कुल हिमालय की गोदी में है वहीं से दिव्य ज्योति आपकी बंबई में आई और बंबई में उन्होंने ऐसा कल्प वृक्ष लगाया जिसके नीचे श्रोता वक्ता दोनों बैठ करके वेदांत का स्वाध्याय प्रवचन श्रवण करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रेमपुरी महाराज के हम लोगों पर कृपा आशीर्वाद वरदान है। कल्पना कीजिए यह यदि वेदांत कलत्तरु नहीं होता तो हम लोग यहां पर इसका लाभ उठा नहीं पाते। संसार में सब कुछ सुलभ है भगवान शंकराचार्य के वचनों में, पर तीन वस्तु अत्यंत दुर्लभ है, मनुष्यत्व मोक्षुत्व और महापुरुषों की संगति। परंतु इन तीन दुर्लभ चीजों को प्रेमपुरी महाराज जी ने यहां पर इस संस्थान के द्वारा सुलभ बना दिया। यहां के कार्यकर्ता ही बड़े धन्य है इस प्रकार से समुचित व्यवस्था करते हुए श्रोताओं का ध्यान रखते हैं। तो देखो कैलाश का अर्थ है कि जहां पर हमेशा वेदांत का श्रवण चले, ये केवल मात्र हमारे बुद्धि की व्युत्पत्ति नहीं है, ये शास्त्रीय व्युत्पत्ति बता रहा हूं। कई गई व्याकरण का शब्द है और रसो वैसा उपनिषद कहती है, रस एवं राष्ट्र। तो कैलाशे का अर्थ होता है जहां पर अहर्निश वेदांत का स्वाध्याय चिंतन होता उपनिषद का, उसको कैलाश कहते हैं। और वहां पर भगवान शंकर सूक्ष्म रूप से अवश्य विराजमान रहते हैं। परंतु ये जो रावण था, रावण ने क्या भूल कर दिया कि 10 सिर को तो समर्पित किया था पर मन को समर्पित नहीं किया था, इसीलिए ध्रुवम उपचीतो मुह्यति खल। रावण जो है ना उपचित मतलब की समृद्धि प्राप्त करने के बाद मुग्ध हो गया, मुग्ध होने के बाद भगवान ने उसको भी दंडित किया। इधर पुलस्त्य जो रावण की पूर्वज हैं, वे भगवान शंकर के पास आए, बोले महादेव आप इसके अपराध को क्षमा करें, ये महामूर्ख इसको पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। जब पुलस्त्य ऋषि आकर के भगवान से प्रार्थना किए तब जाकर रावण का फिर उद्धार हुआ, कल्याण हुआ। यहां पर देखिए इस श्लोक का तात्पर्य इतने में है कि ध्रुवम उपचीतो मुयति खल, इसका तात्पर्य है, श्लोक का हृदय है। व्यवहारिक जीवन में भी आप देखते हैं कि बड़े बड़े जो नेता होते हैं वे चुनाव के पहले सवर्णों की निंदा करेंगे, ब्राह्मणों की निंदा करेंगे, परंतु जब घर में पूजा पाठ कराना हो या चुनाव में जितने के लिए पूजा पाठ कराना हो तो किससे कराएंगे? ब्राह्मण से कराएंगे, भंगी से कराएंगे? ब्राह्मण से ही कराएंगे। एक तरफ तो चुनाव में जीतने के लिए ब्राह्मण से पूजा पाठ कराएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे जब सभा में तो वोट बैंक के लिए उसी की निंदा करेंगे। ऐसे ही जब नौकरी देना हो ना ब्राह्मण को, सवर्ण को, ब्राह्मण क्षत्रिय को, तो बोलेंगे महाराज ये तो स्वयं विकसित हैं, हमें जो है ना देना है आरक्षित को नौकरी, पर बीमार पड़ेंगे तो, जब बीमार पड़ेंगे तो आरक्षित डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे, बढ़िया डॉक्टर खोजेंगे जो बहुत कुशल हो, उस समय आरक्षित डॉक्टर से जाएंगे नहीं जानबूझ करके भी, ये तो आरक्षण के बल पर नौकरी प्राप्त किया है। मान लो अपना बढ़िया बिल्डिंग मकान दुकान बनाना हो तो आप आरक्षित इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे, बल्कि जो बढ़िया कुशल हो उससे मकान बनवाएंगे। पर सरकारी काम करवाना हो, नौकरी लगवाना हो तो कोई भी आरक्षण वाला चाहिए। तो जो जिससे लाभ प्राप्त करके और ठुकरा दे उसको खल कहते हैं। खल की परिभाषा यही है कि जिससे लाभ तो प्राप्त कर ले, फायदा उठा दे और बाद में उसी को हानि पहुंचाए, उसका नाम है खल। तो जो ऐसे खल हैं वे खल हमेशा जो है तिरस्कार करते हैं, पर उनका कभी उद्धार नहीं होता है। इस 12वें श्लोक में कुछ दंताचार्य जी ने बताया। अब आपको हम द्वापर में ले जाते हैं क्योंकि जल्दी पूरा करना है ना। द्वापर में देखिए किस प्रकार से भगवान शंकर की उपासना किसने किया, पहले उच्चारण कर लें। यद्रिदिम सूत्राम्लो वरद परमो चैरपिशति मध चक्रे बाण परिजन विधेयस्त्रिभुवन न तच्चित्रम तस्मिन् वरिवसितरी त्वच्चरणयो न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसाह्यै यवनति। द्वापर में सुत्राम्लो वरद, यहां वरद भगवान शंकर का संबोधन है। हे वरद बरमल श्रेष्ठ, बरम श्रेष्ठम ददादिति वरद, सर्वश्रेष्ठ है आत्मज्ञान, सबसे श्रेष्ठ धन है आत्मधन, इसके बाद फिर आपका शरीर है, द्रव्य सब बाद के हैं। तो जो आत्मज्ञान को देने वाले हैं ऐसे भगवान शंकर को वरद से संबोधन किया। परिजन विधेयस त्रिभुवन, आप परिजन का अर्थ होता है परिवार, मतलब कि बाणासुर ने आपको प्रसन्न करके तीनों लोगों को दास की तरह से अधीन बना लिया। बाणा मतलब बाणासुर, परमोच्चय सतिम, परमोच्चय का अर्थ सबसे बड़े चढ़े श्रेष्ठ, सुत्राम्ला मतलब इंद्र, इंद्र का नाम एक सुत्राम्ला है, रिद्धि मतलब ऐश्वर्य को, अपि मतलब भी, यत मतलब जो, आधा मतलब के नीचे कर दिया, अभिभूत कर दिया, चक्रे तत मतलब वह, त्वत चरणयो आपके चरणों की, वरी वशीतरी का अर्थ है कि सेवा पूजा का ही प्रताप है, तस्मिन चित्रम इसमें कोई आश्चर्य नहीं, त्वयि शिरसि शिरसा अवनति आपके चरणों में जो सिर का झुकना है वह कस्से उन्नतेन भवति, किसके उन्नति के लिए विकास के लिए नहीं होता है, अर्थात सबके उन्नति का कारण बन जाता है। ये जो बाणासुर है, बाणासुर भगवान शंकर को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके पूरे संसार को परिजन बना लिया, मतलब कुटुंब परिवार के समान। इंद्र को लोग मानते हैं, प्रणाम करते, आदर्श जो करते हैं वह डंडे के भय से करते हैं, परंतु बाणासुर ने अश्वमेध याग नहीं किया। इंद्रासन पाने के लिए 100 अश्वमेध याग करना पड़ता है, इसके बाद आप इंद्रासन को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु बाणासुर ने अश्वमेध याग भी नहीं किया, केवल मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाता और बना करके फूल पत्ती से पूजा करता, पूजा करने के बाद नर्मदा जी में उसको भी बहा विसर्जन कर देता। इस प्रकार से बाणासुर हर दिन मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाए, बनाकर पूजा कर विसर्जित करता था। इस पूजा से भगवान शंकर इतने प्रसन्न हो गए उसको मुहमांगा वरदान दे दिया। वरदान पाने के बाद उसने पूरे संसार को परिजन मतलब परिवार के समान, देखिए परिजन में और प्रजा में अंतर है, परिजन बोलते परिवार को, परिवार आपका आदर सम्मान न श्रद्धा से करता है, हृदय से करता है, पर नौकर आपकी बात मानता है डंडे से। नौकर में बच्चा मानता है, लोग कहते हैं ना कि नौकर तो हमारी बात मानता है, आज्ञा मानता है, सम्मान करता, नमस्कार करता है, पर बच्चे नहीं करते हैं, लोग शिकार करते। नौकर तो डंडे के भय से करता है, उसको मालूम है नहीं करूंगा तो मालिक हटा देगा या तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा, इस भय से करता है। परंतु आपके बच्चे को न तनख्वाह का लोभ है न डंडे का भय है। तो वाणासुर ने इस प्रकार से संसार को अपने अनुकूल बना लिया, सभी उसके अनुकूल बन गए, जैसे कोई परिवार होता हो। न तच्चित्रम, इसमें किसी प्रकार का वैचित्र नहीं है। तो भगवान की उपासना से अलभ्य भी लभ्य हो जाता है, जो वस्तु दुर्लभ वह भी सुलभ हो जाती है। इस प्रकार से यहां पर पुष्पदंताचार्य जी बदला रहे हैं कि सतयुग त्रेता द्वापर में जैसे भी हो आपका कोई उपासना करे, चाहे जान कर करे चाहे अनजान के करे, आप उस उपासना से श्रेष्ठ वरदान को देते हैं। भस्मासुर का प्रसंग भी आगे आता है कि भस्मासुर भी भगवान शंकर को प्रसन्न किया, परंतु भस्मासुर रावण की तरह से स्वयं ही पार्वती जी को पाने के लिए भगवान शंकर की तरफ दौड़ा कि यदि हम भगवान शंकर को भस्म कर दिए तो पार्वती उपलब्ध हो जाएगी, जगत का गुरु बन जाऊंगा, परंतु होगा विपरीत, उसका विनाश हुआ। तो यहां पर जो ध्रुव मतलब निश्चित, खला मतलब दुष्ट, जो कृतघ्न है, जिससे लाभ प्राप्त करता है उसका तिरस्कार करता है, उसका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। यहां दोनों बात बतला दिया, यदि आप किसी की उपासना से कुछ प्राप्त किए हैं, प्राप्त करने के बाद कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करेंगे, जैसा कि मनु संविधान है, मनु महाराज कहते हैं कीर्तम प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातनम, यदि किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो उसके पर जब कृतज्ञता ज्ञापन करे सनातन धर्म है। यदि आप कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करके यदि आप कहें कि मैंने किया, इसने क्या किया, तो अहंकार होगा। अहंकार मतलब कि हमारे उपासना से हमारे तपस्या से सब कुछ प्राप्त हुआ। एक तपस्वी थे, हिमालय बहुत तपस्या किया, तपस्या के बाद भगवान शंकर प्रसन्न होकर वरदान देने आए। वरदान देने आए तो तपस्वी ने वरदान में मांगा कि आप हमें अमर बना दीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि इस शरीर से अमर नहीं हो सकते हो, मरने के बाद तुम्हें अमरता मिल जाएगी। अमर ये अहंकारी आदमी जब तपस्या करता है अमरता पाने के लिए, तो जब भगवान शंकर ने कहा कि अमरता सशरीर कोई हो नहीं सकता, फिर ऋषि तपस्वी ने कहा कि आप हमें इतना ऐश्वर्य दीजिए कि मांगने वाले को मैं कभी इनकार न कर सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु, भगवान के पास क्या कमी। कुछ दिन तक तो ठीक ठाक रहा, पर धीरे धीरे काल बीतता गया, उसको अहंकार हो गया कि मैंने बड़ी तपस्या की, तपस्या से भगवान शंकर को प्रसन्न किया, वरदान में भगवान से हमने अमरता मांगी, पर भगवान ने कहा कि मरने के बाद तुम अमर हो जाओगे और जीते जी अमरता नहीं मिल सकती है, तो हमें ऐश्वर्य प्रदान किया। तपस्वी को अहंकार हुआ कि हमारे तपस्या से ऐश्वर्य मिला, भगवान शंकर ने फोकट में तो दिया नहीं, जो भी कुछ दिया तपस्या से, तो यही अहंकार आदमी को जो है ना भटकाता है। तपस्या करना बुरा नहीं, पर तपस्या का अहंकार अभिमान होना बुरा है। इतना अभिमान हो गया कि जो है दीननाथ अपनी तपस्या का बखान करते रहा। भगवान शंकर ने सोचा बेचारा बहुत तपस्या किया और अहंकार होने के बाद पतन हो जाएगा, और हमने जो वरदान दिया मर्ता का विफल हो जाएगा, इसलिए इसको सावधान करना चाहिए। भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर उस तपस्वी के पास आते हैं और बोलते हैं भिक्षा मह्यम देहि, मुझे भिक्षा प्रदान करो। हाथ उठा के बोला कि आपको जो चाहिए सो मांग लो। बोले कि पहले तुम वचन दो, ऐसे हम नहीं मांगने वाले। हमने मांग लिया तुमने ना कर दिया तो हमारा वचन खाली जाएगा। इसलिए तुम तीन बार पहले संकल्प पढ़ो कि मैं अवश्य दूंगा। उन्होंने कहा कि तीन बार नहीं 13 बार संकल्प पढ़वा लो, मैं सबको देने में समर्थ। अभिमानी विचार नहीं करता है, बस संकल्प पढ़ लिया। पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि देखो हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण को लोभ नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है। इसीलिए हम आपसे धन नहीं मांगेंगे, धन मांगने से अहंकार हो जाएगा, हम भोग ऐश्वर्य में पड़ जाएंगे, भिक्षा से हमारा काम चल जाता है। आप हमें अपने तपस्या का एक भाग दे दो। उसने कहा ले लो, हमने बहुत तपस्या किया, 1 वर्ष की तपस्या का भाग आपको देता हूं। पांचों ब्राह्मणों ने कहा कि हमें तो बस तपस्या का अंश ही चाहिए। वह घबराया, बोला पांचों को अंश दे दूंगा तो मेरे पास क्या रहेगा, बहुत चिंतित हुआ। ब्राह्मणों ने कहा देखो हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, पहले हमारा नाम सुन लो। ये जो सबसे आगे है इनका नाम है आकाशदेव, ये आकाश के हिमानी देवता है। दूसरे हैं मरुद्देव, वायु का हिमानी देवता। और तीसरे जो ब्राह्मण है ये आपके अग्निदेव है, अग्नि के हिमानी देवता। और चौथे ब्राह्मण साक्षात वरुण देव, जल के हिमानी देवता है। और पांचवा जो मैं हूं पूषा देवी, ये हम पांचों ब्राह्मण बन के आपके पास आए हैं क्योंकि आपने बड़ी भारी तपस्या की है, आपके तपश्चर्या के महिमा को सुनकर आए तपस्या के भाव को मांगने के लिए। तपस्वी तो घबराया, उन्होंने तर्क दिया कि तुमने हमारे अंश से बैठ के तपस्या की। जल देवता ने कहा कि तुमने हमारे जल को पी के तपस्या किया। मरुद्देव ने कहा कि तुमने हमारे हवा को ऑक्सीजन को लेकर तपस्या किया। आकाश ने कहा कि जहां तुम बैठे थे ना चारों तरफ हमारा ही अंश था, इसलिए हमारा मौलिक अधिकार है तपस्या में। अब तो तपस्या और घबराया, अब तो देना ही पड़ेगा। उसे बात समझ में आ गई, चरणों में गिर पड़ा, बोला अपराध क्षमा करें, मुझे बात समझ में आ गई। तो जो तपस्या है, तपस्या करना अच्छी बात है पर अहिमान हो जाता है तो आदमी अपने इष्ट का भी तिरस्कार कर देता है। परंतु यदि हम जीवन में परमात्मा को आश्रय देंगे तो फिर भगवान रक्षा करते हैं, भगवान की जिम्मेदारी हो जाती है। तो यहां पर कह दिया कि न तच्चित्रम तस्मिन वरी वशीतरी त्वच्चरणयो, आपके चरण की उपासना करने वाले सब कुछ प्राप्त कर लेते, यहां तक कि मौत को भी जीत लेते हैं। कलयुग में मार्कंडेय ऋषि हुए, मृकंडू के पुत्र, उनकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। उनके पिता ने बता दिया कि बेटा तेरी आयु केवल 8 वर्ष की है। जब मृत्यु का समय आया केवल 3 दिन बाकी रहे, पिता ये बहुत उदास हो गए। मार्कंडेय ने पूछा कि आप इतना उदास क्यों हैं, पिताजी ने सारी बात बता दी। मार्कंडेय जी महामृत्युंजय का मंत्र जपते हुए भगवान शिव की शरणागत हो गए। बोले कि आप सबको देने में समर्थ है, आपने आयु यदि आपने जन्म दिया है तो आप हमको अमर ही बना सकते हैं। समयानुसार यमराज आए, जैसे यमराज आकर के अपना यमपाश फेंकते हैं तत्काल भगवान शंकर का विभाव हो जाता है। भगवान शंकर ने यमराज से कहा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो महामृत्युंजय का जप करता है उसको तुम यमपाश से बांध नहीं सकते। यमराज चरणों में गिर गए, बोले कि महाराज नियम भी तो आपने ही बनाया है ना, आपने ही आयु दी, आपने ही 8 वर्ष की आयु का विधान किया और आपने मुझे यमपद पर बिठाया, तो मैं तो आपके ही काम को पूरा करने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा कि सो ठीक है, परंतु जो महामृत्युंजय का जप करता है तो मुझको यमपाश से बांध नहीं सकते। भगवान शंकर ने मार्कंडेय को अमर चिरंजीवी होने का वरदान दिया। तो न कस्या उन्नति भवति शिरसस्पै अवनति, भगवान के चरणों में सिर झुकाने पर किसी की भी अवन्नति नहीं होती है। अवन्नति मतलब कि पतन नहीं होता है। हम संसार में जब सिर झुकाते हैं तो कामना सवार होती है और कामना सवार होकर संसार में भटकाती है, पर यही सिर जब भगवान के चरणों में झुकता है तो फिर हमारा हमेशा के लिए कल्याण हो जाता है। अब समय पूरा हुआ, यहीं विराम लेते हैं। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் shaivam.org, தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் வைதிக் சாந்தி மந்த்ரா பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ ஹரிஹரானந்த சாகர்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
3: லிங் தேக்கே இது சம்பவ ஹை கி ஹம் கஹீன் பஹார் ஜாயே 15-20 தின் கே லியே சலே ஜாயே तो जैसे ही फिर पुनः वापस लौट के आते हैं तो जैसे ही ताला खोला और अंदर घुसे तो आलमारी खुली हुई पड़ी है। अंदर जो सामान था वो सब इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। आप घबरा करके कहते हैं कि अरे मेरे घर में चोर आ गया और मेरा सामान ले गया है। अब वहां पर चोर खड़ा है क्या? नहीं, तो हफ्ते पहले ही वो सब उठा करके ले गया। लेकिन उन्होंने चोर के द्वारा जो किया गया, जो वो सामान जो रफा धफा कर दिया है, वो कार्य वो दिखा रहा है कि चोर आ गया। वो जो टूटा कबाट है, अलमारी है, वो इस बात को साबित कर देती है कि यहां पर चोर आ चुका है। यदि उनको ढूंढना है तो क्या करेंगे? उसके पद चिन्हों को देखा जाएगा। ये कार्य वो चोर की सिद्धि तो कर देता कि चोर जरूर आया है, चोर बिना चोर आए ये आलमारी टूट नहीं सकती है, सामान जो है रफा दफा और गुम नहीं हो सकता। किंतु वो चोर कैसा है वो देखना चाहे तो उसके पद चिन्हों को देखिए। पद चिन्ह से ये पता चल जाएगा कि ये स्त्री है या पुरुष है, वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष के दोनों के पद चिन्ह में बहुत फर्क होता है। और ठीक है, यदि पुरुष है इस बात का पता चल जाए तो वो छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, इस बात का भी पद चिन्ह से पता चल जाता है। अब यदि ढूंढना है तो क्या करेंगे? उनके पद चिन्ह के ऊपर आप चलेंगे तो वो जहां पहुंचा है वो मिल जाएगा। लेकिन कई बार संभव ऐसा है कि वो पद चिन्हों को मिटा भी दे। किंतु जैसे आजकल जो है विज्ञान का विकास हुआ है, फॉरेंसिक लैब, तो वहां पर जो पदार्थ या हैंडल के ऊपर, जैसे उन्होंने हैंडल तो तोड़ा ही होगा तो उसके ऊपर कुछ निशान छूट जाते हैं, तो निशान के माध्यम से फॉरेंसिक लैब के अंदर उनका रिसर्च करने पर उस व्यक्ति तक पहुंचा जा सकता है। तो वो पहुंचने का जैसे माध्यम है, वैसे ही जो ओंकार है वो परमात्मा के तक पहुंचने का क्या है? माध्यम है। उनके द्वारा आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए उपलब्धि उसके द्वारा हो जाती है, पद चिन्हों के द्वारा उपलब्धि हो जाती है। जैसे भागवत में जो कथा आती है, भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, स्यमंतक मणि निमित्तक, तो भगवान ने उस कलंक को मिटा दिया था। सत्राजिति नाम का एक यादव था, उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की थी और उपासना से उन्होंने सूर्य से एक मणि पाया था, वो स्यमंतक मणि। अब हुआ क्या कि वो मणि को वो सर में बांध करके वो घूमता रहता था। वो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ये मणि को सर में बांध करके घूम रहे हो ने, वो तुम्हारे लिए अनिष्ट का कारण हो सकता है, वो तुम उसको छुपा करके रखो, किसी को दिखाओ मत। जो महंगी चीज है वो चारों ओर सबको दिखाते हुए निकलना नहीं चाहिए। जैसे आजकल हो रहा है कि आप सुवर्ण की चैन पहन करके निकलेंगे तो क्या होगा, वो खींच करके चले जाने वाले बहुत घूम रहे हैं। तो भगवान ने तो उनको ठीक सलाह दी, लेकिन उनको लगा कि देखा ये भगवान के पास सुवर्ण की कोई कमी नहीं है, सुवर्ण की द्वारिका के वो मालिक है, तो मेरे पास एक मणि है वो भी उसके मन में खटकती है, कहते वो भी उससे देखी नहीं जा रही है। अब उतने में एक दो दिन में हुआ ऐसा कि उनका लड़का वो मणि को सर में बांध करके वो घूमने के लिए चला गया, तो वो लड़का वापस ही नहीं आया। बहुत ही खोज की लेकिन वो वापस नहीं आया, तो वो सत्राजित है ने वो कहने लगा कि निश्चित ही भगवान श्री कृष्ण की नजर जो है वो मेरे मणि के ऊपर पड़ी थी, इसलिए मणि को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मेरे पुत्र को मरवा दिया है वो मणि के लिए। तो धीरे धीरे वो बात जो है भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच गई। होता ऐसा है कि हम किसी के बारे में कुछ कहे और फिर जिसको कहते उनको हम साथ साथ में ये भी कहते हैं कि तुम इस बात को कहना मत किसी को, यदि ऐसा ही होता तो तुम उनको ही क्यों कहते, यदि वो अकथित ही अकथ्य है कहने योग्य नहीं है तो उनको ही नहीं कहना चाहिए। कहने के बाद फिर हम कहते हैं कि तुम उसको कहना नहीं, तो होता यह है कि धीरे धीरे वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच ही जाती है, भगवान श्री कृष्ण तक वो बात पहुंच गई। भगवान श्री कृष्ण को लगा कि उन्होंने तो मेरे को कलंक लगा दिया, अब वो कलंक धोना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहीं ये यादवों को तैयार किया कि चलो तुम लोग मेरे साथ साक्षी के रूप में देखो, हम मणि को ढूंढ लाते हैं। तो तैयार हो गए सब। अब भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले वो बच्चों के साथ जो खेल रहा था वो लड़का, उन बच्चों को इकट्ठा किया कि अच्छा तुम बताओ तुम किस दिशा में खेलने के लिए गए थे, तो कहा कि इस दिशा में गए थे। भगवान श्री कृष्ण उस दिशा में सबको लेकर के गए, तो वहां देखते हैं काफी दूर जाकर के तो वो लड़का है ना वहां मरा हुआ पड़ा। अब वो देखा कि ये तो यहां मरा हुआ पड़ा है और मणि नहीं है, मणि कहां गया होगा। तो भगवान ने वहां देखा कि घमासान युद्ध हुआ है, लड़के ने भी काफी छूटने का प्रयत्न किया है, देखा पद चिन्ह तो शेर के पद चिन्ह पाए गए, निश्चित हुआ कि शेर ने इस बच्चे को लड़के को मार दिया गया है और वो शेर मणि लेकर के भाग गया। अब शेर को कहां ढूंढे, तो उनके पद चिन्ह को देखते हुए आगे बढ़े भगवान, वो काफी दूर तक गए तो देखा कि शेर भी वहां मरा हुआ पड़ा। भगवान ने देखा कि शेर भी यहां मरा पड़ा हुआ है और मणि नहीं है। अब किसने शेर को मार दिया होगा, तो जो है पास में देखा कि शेर का किसी के साथ घमासान युद्ध हुआ है, और वहां पद चिन्ह को देखे तो पाया गया कि भालू के ये पद चिन्ह है। अब किसी प्राणी के है समझ लो, तो वो पद चिन्ह को देखते हुए वो भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़ते गए तो वो पद चिन्ह जो है एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहे थे। भगवान ने सबको कहा कि इस गुफा के अंदर वो है, वो वहां जाना पड़ेगा। तो ये साथ वाले सब कहने लगे कि नहीं, हम ये अंधेरी गुफा में नहीं आएंगे, आपको कलंक लगा है, आप जाइए अंदर। भगवान ने कहा ठीक है, तुम लोग यहां बाहर खड़े रहो, मैं अभी अंदर जाता हूं। भगवान अंदर गए, काफी दूर गए अंधेरी गुफे में। तो वहां गए तो थोड़ा सा एक जगह प्रकाश दिखा। जैसे वो नजदीक गए तो एक लड़की वो मणि के साथ खेल रही है। भगवान अभी जाकर के वहां खड़े रहे, कुछ बोले उससे पहले अंदर से कोई वो प्राणी आ गया और सीधा भगवान के ऊपर अटैक कर दिया और बड़ा घमासान युद्ध हुआ भगवान के साथ। वो भालू थे तो उन्होंने देखा कि ये मनुष्य है, मेरे से परास्त क्यों नहीं हो रहे। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो और कोई नहीं, मेरे इष्ट देव भगवान राम ही है। वो राम ही तो कृष्ण रूप में है। तो फिर जो है उन्होंने क्षमा याचना की और प्रायश्चित के तौर पर कहा कि आप ये मणि भी ले जाइए और साथ साथ में ये जो मेरी बेटी है वो भी मैं आपको देता हूं। जामवंती भगवान की पटरानी है कि नहीं, जामवंती। वो भालू कौन है? वो जामवान जो रामायण में भगवान राम का जो कार्य किया था वो। तो ये कहानी के द्वारा जो है बात ये स्थापित होती है कि पद चिन्ह के द्वारा यदि आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे वो मणि को पाया गया वैसे ये आत्मा रूपी मणि को प्राप्त करने के लिए जैसे आप एक एक जो कोष है उस कोष को आप उसके अंदर अनित्य बुद्धि और शरीर अनात्म बुद्धि करते हुए चले जाएंगे तो वो अंत में जाकर के वो आत्मा तक पहुंच जाएंगे, ब्रह्म तक पहुंच जाएंगे। इसलिए ओंकार है ना, वो ब्रह्म का कोष है। इसलिए ब्रह्मणः कोशोऽसि, ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है, ब्रह्म की उपलब्धि के लिए वो आलंबन है। इसलिए कहा गया कि हे ओंकार आप ही ब्रह्म का कोश है। इसलिए हम शब्दात्मक जो है वर्ण का समूह अकार उकार मकार से हम प्रार्थना नहीं कर रहे, किंतु ये ओंकार जिसकी उपलब्धि का स्थान है उस परमात्मा से प्रार्थना हुई, जड़ ओंकार से नहीं, अचेतन ओंकार से प्रार्थना नहीं हुई। किंतु अचेतन जो प्रणव है उसका जो वाच्य और लक्ष्य परमात्मा है वो उनकी प्रार्थना हुई। हम शालिग्राम की पूजा करते हैं तो क्या पत्थर मान करके पूजा करते हैं? नहीं, ये शालिग्राम विष्णु है, विष्णु मान करके पूजा करते हैं तो फल देने वाले कौन है? पत्थर फल देंगे क्या? वो शालिग्राम भगवान फल देंगे, ठीक है कि नहीं? ऐसे यदि हम ओंकार से प्रार्थना करते हैं तो ओंकार है वो अचेतन है तो वो फल नहीं देंगे, किंतु ओंकार से अभिलक्षित उपलक्षित जो परमात्मा है वो हमको फल देने वाले है। फल देने वाले कौन है? परमात्मा है। इसलिए आखिर में परमात्मा से प्रार्थना हुई। दूसरी बात इसमें कही गई, देखो मेधया पिहित, ये ओंकार कैसा है? मेधया पिहित है। देखे अभी जैसे बात हुई कि ओंकार के लिए कहा गया कि आप ब्रह्मण कोशो से, आप कोश है, ब्रह्म की उपलब्धि का स्थान है, तो फिर सब लोग जो है ओंकार की उपासना क्यों नहीं करते? ओंकार के माध्यम से परमात्मा दर्शन क्यों नहीं कर लेते? यदि श्रेष्ठ है तो जो श्रेष्ठ है उनका तो अनुकरण करना चाहिए, वही जो है आश्रय लेना चाहिए। तो कहा कि सब लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए कहा मेधया पिहित हे ओंकार, आप मेधा से पिहित है। मेधा से अभिप्राय लौकिक प्रज्ञा। आप लौकिक प्रज्ञा से आच्छादित है, लौकिक प्रज्ञा से अभिप्राय सामान्य लोक है, उनके द्वारा आप आच्छादित है। सामान्य जन व्यक्तियों को इस बात का पता नहीं है कि ओंकार की उपासना से परमात्मा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस बात की प्रसिद्धि नहीं होने से सब लोग ओंकार की उपासना नहीं करते हैं। अब लोग देखो किसकी उपासना करते हैं। लोग जो है धर्म परलोक और इन उपासनाओं के लिए वो खुद जो है प्रमाण का विचार नहीं करते। सब लोग ज्यादातर अधिकतर लोग क्या करते हैं वो देखते हैं। और आप लोग ये देखते हैं धर्म के बारे में तो खास ये है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं, अधिकतर लोग जो है किसकी उपासना करते हैं, तो फिर वो और लोग भी जो उनके पीछे पीछे वो चले जाते हैं, प्रमाण का विचार नहीं करते, इसलिए फिर वो फल को नहीं पाते हैं। इसलिए जिसका शास्त्र में उल्लेख ही नहीं है ऐसी मनगढ़ंत मनुष्य बुद्धि परिकल्पित उपासनाएं करते हैं। इस प्रकार की उपासना का और कर्म का कोई फल नहीं मिलता है। और फिर दोष भगवान को देते हैं, सिस्टम को देते हैं कि ये तो ऐसा ही है, सब फालतू तो इसमें कुछ होता नहीं है कहते, ऐसा लोग कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम उपासना का जो माध्यम है वो सही चुनते हैं, लेकिन हम जो है ढंग से करते नहीं है। जैसा विधान बताया गया है उसी प्रक्रिया से हम यदि नहीं करते तब भी हम फल को नहीं पाते हैं, और दोष जो है हम उस माध्यम को देते हैं, कर्म और उपासना को देते हैं कि ये तो व्यर्थ है, इससे मेरे को कोई लाभ नहीं हुआ। क्योंकि ये लौकिक प्रज्ञा से आच्छादित है, आम जनमानस के लिए है नहीं। इसलिए सामान्य प्रज्ञा के द्वारा आपका ज्ञान संभव नहीं है, विशेष प्रज्ञा चाहिए, विशेष कोटि चाहिए। जो आगे बढ़ा हुआ है वही इस बात को, जो आगे बढ़ा हुआ है अभिप्राय है, जो ये प्रमाण मूलक सत्संग कर रहा उनको ये बात समझ में आती है, सामान्य व्यक्ति को नहीं। जैसे हमारे यहाँ जो सत्संग हो रहा है वो कैसा प्रमाण मूलक सत्संग है, यहाँ कोई परिकल्पित नहीं है। और सामान्य मनुष्य का ये अभ्यास है कि वो कोई लाभदायक या कोई फल को लालच देकर के बताया गया है तो उसकी ओर जो है व्यक्ति ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए जो भी समझना चाहिए धर्म और ब्रह्म के विषय में तो खास प्रमाण मूलक विचार करना चाहिए, जो अप्रामाणित है उनका त्याग करना चाहिए। इसलिए कहा कि मेधया पिहितः लौकिक प्रज्ञा से ये ओंकार जो है वो ज्ञातव्य नहीं है, सामान्य व्यक्ति के द्वारा उनका ज्ञान संभव नहीं है। फिर आगे एक बात और कही गई ओंकार से कि मैं श्रुतम गोपाय, अंत में ने श्रुतम मैं गोपाय, ये जो अंतिम जो पंक्ति है उसको आप यदि क्रम में लगाएंगे शब्दों को तो ऐसा होगा मैं श्रुतम गोपाय, मैं यानी मम, श्रुतम यानी जो श्रवण पूर्वकम अधितम, श्रवण पूर्वक मैंने ये जो उपनिषद का जो अध्ययन किया है वो गोपाय, गोपाय का अर्थ है विस्मृत्यादि निवारणेन पालय। ओंकार से प्रार्थना की गई कि मैंने जो अध्ययन किया है, श्रुतम यानी जो मैंने श्रवण किया है, आपने मेरे को अधिक श्रवण शक्ति दी, क्योंकि पहले ये मांगा गया नहीं कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, कर्ण के द्वारा कान के द्वारा मैं बहुत सुनूं, तो ओंकार की कृपा से हमने ये जो है उपनिषद का श्रवण किया। श्रवण यानी अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य पूर्वक सभी वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में ही तात्पर्य है। यहां तक का श्रवण वो यदि हमने किया तो वो किया हुआ श्रवण वो विस्मृत न हो, उसका क्या स्मरण हमको बना रहे। अंत में ये ओंकार से कहा गया कि मेरे द्वारा ये जो अधित ये जो अध्ययन हुआ है, श्रवण पूर्वक जो अध्ययन हुआ है, वो गोपाय यानी कभी उनका विस्मरण न हो। और विस्मृत्यादि निवारणे न पालय, आप इस तरह से मेरा पालन करें। वो आकर के ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ जैसे तुमको नहीं होगा, वो नहीं देखेंगे। अभिप्राय है कि इस तरह से मेरा पालन हो, यानी मेरी मेधा शक्ति होगी तो मेरे को इस बात का स्मरण रहेगा। और स्मरण रहेगा, ओंकार की उपासना करे और अंतिम श्वास तक ये जो है हमारा क्रम बना रहे, तो मृत्यु के समय भी आप मेरे को स्मरण रहे। क्योंकि मृत्यु के समय यदि विस्मरण हो गया तो कठिन हो जाएगा। और स्मरण उसी बात का रहता है जिसका अभ्यास किया हुआ है। इसलिए यहां इतना ही नहीं समझे कि केवल स्मरण रहे, स्मरण रखने के लिए अभ्यास भी चालू रहे। और ये बिल्कुल बात निश्चित है कि जिस विषय का हम अभ्यास करते हैं ना, तो वो जो है वो स्मृति भी मृत्यु के समय उसी की रहती है। संकट आने पर पता चल जाता कि हमारा अभ्यास किस विषयक है। उस समय भगवान याद आए तो समझना कि उनका स्मरण यही है, और नहीं तो कोई पति पत्नी सगा संबंधी याद आ जाते हैं, वो कोई रक्षा करने वाले। भगवान ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मृत्यु के समय मेरा स्मरण करता हुआ यदि शरीर छोड़ता है तो वो मेरे को प्राप्त होगा। क्यों ऐसा है तो भगवान कहते हैं वो सदा तद्भाव भावित, स्मरण मृत्यु के समय उसका रहेगा जिसका अभ्यास हुआ है। भगवान कहते यदि मेरा स्मरण करता है तो वो मेरे भाव से वो सदा भावित था, जीवित अवस्था दरमियान भी वो मेरा ही स्मरण करता था, इसलिए मृत्यु के समय वो मेरा स्मरण उनको होगा। सदा तद्भाव भावित, अभ्यास उन्होंने उन्हीं का किया हुआ। यदि संसार का अभ्यास है, धन का अभ्यास है, तो मृत्यु के समय धन याद आएगा। देखिए जो धन के लोभी है उसका यही हाल होता है। एक व्यक्ति ऐसा था जो दुकान चला रहा था, बढ़िया दुकान चल रही थी। अब हुआ ये कि वो वृद्ध हो गया, उनके बच्चे भी योग्य हो गए, दुकान चलाने योग्य हो गए, तो वो खुद जो है कभी कभी जाया करता था। और चार बच्चे थे, वो चारों बच्चों जो है वो दुकान को बढ़िया से चला रहे थे। अब वो जो सेठ है उनकी जब मृत्यु की घड़ी उपस्थित हुई तो मुमूर्षु होकर के वो मृत्युशैया पर वो सो रहा है। अब लड़कों को लगा कि अब ये रहेंगे नहीं, अंतिम श्वास गिन रहे। तो उस समय जो लड़का वहां पर उपस्थित था, उन्होंने अपने और जो तीनों भाई थे उनको भी बुला लिया कि मृत्यु के समय चारों बच्चे उनके सामने उपस्थित रहे तो अच्छा। तो वो भी आ गए, तुरंत फटाफट दुकान बंद करके आ गए और चारों वहीं पे आकर के इर्द गिर्द खड़े हो गए। अब वो जो मुमूर्षु वृद्ध जो है पूछ रहे नाम लेकर के, अमुक नाम वाला लड़का कहां है, तो वो बोला कि मैं पिताजी यही हूं आपके सामने। और दो का नाम लिया। तो दोनों ने कहा कि पिताजी मैं भी आपके सामने उपस्थित हूं, और चौथे लड़के का नाम लिया। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि पिताजी मैं यहीं उपस्थित हूं, ऐसा सुनते ही वो बोले कि तो दुकान पर कौन है, कहते और श्वास छूट गए। अब वो कहां जाएंगे बताइए, उनका जन्म कहां होगा, दुकान में, क्योंकि अभ्यास उन्हीं का था। इसलिए परमात्मा का, इसलिए जो है हमको अभ्यास यही करना चाहिए कि हमारा मन परमात्मा में रहे, तो मृत्यु के समय भी यही होगा। तो इस तरह से मृत्यु के समय भी विस्मरण न हो, इस तरह से ये बहुत ही दिव्य प्रार्थना है, उसका अवश्य पाठ करते रहना चाहिए। पाठ करने से अवश्य हमको इस प्रकार का जो है वो जैसे बताया गया लाभ वो मिल सकता है। ओम तत्सत।
2: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaiva Lahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: आप जब मंगलाचरण करते हैं ना, तो आपके मन में एकाग्रता आ जाती है। आपको भी ध्यान देना, आप आकर के इसी प्रवचन में बैठ जाना और आप शांति पाठ करने के बाद बैठना, आपके मन में अलग महसूस होगा, भाव महसूस होगा। आप आंख बंद कर आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उसके बाद कोई काम कर रहे हैं, तो आप अनुभव करेंगे आपके मन में एकाग्रता आ गई है। आपने आंख बंद कर परमात्मा को याद किया, आपके मन की जो शक्तियां हैं वो खींचकर एक जगह पर आ चुकी होगी। आप जब मंगलाचरण करते हैं ना, तो आपके मन में पवित्रता, आपके मन में इंद्रिय संयम, आपके मन में श्रद्धा आस्तिकता का उदय हो जाता है और फिर आपकी श्रम शक्ति और प्रखर हो जाती है। यह मंगलाचरण हमारी दोनों शक्तियों का निर्माण करता है, एकाग्रता का भी और परिश्रम को भी। परिश्रम, आप साधना करते हैं, आप जब ध्यान करते हैं, तो आपके भीतर श्रम करने की शक्ति और बढ़ जाती है। और इसीलिए शास्त्र ने कहा कि आप मंगलाचरण करो। हाँ, बस आप समझ गए। आप जब भी भगवान का नाम स्मरण करके आगे बढ़ते हैं, तो आपके सफलता के भाव बढ़ जाते हैं। अब यहां पर मंगलाचरण किया, कठोपनिषद के प्रारंभ में भी मंगलाचरण है। आप श्रवण करते हैं, मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है। एक होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण, दूसरा होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण का मतलब होता है आप परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं, आप हाथ जोड़ रहे हैं, नमो नमः। आप कहते ना सद्गुरवे नमः, जगद्गुरवे नमः, शिवाय नमः, रामाय नमः, हनुमते नमः। आप नमस्कार करते हैं ना, ये नमस्कार मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। और यहां नमस्कार का अर्थ केवल सिर झुकाना नहीं है, आप श्रवण करते ना पूज्य महाराज श्री कहते हैं न मे इति नमः, ये मेरा नहीं है, आप झुका लेते हैं सिर, आप अपने हाथ जोड़ते हैं और आप क्या करते हैं कि सामने वाले की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं। नब्बे न्याय में इसका बड़ा सुंदर अर्थ किया है, स्वापकर्ष बोधानुकूल व्यापारो

हमसे श्रेष्ठ हैं और हम छोटे। सामने वाले की श्रेष्ठता और अपनी कनिष्ठता को स्वीकार करने के लिए जो आपकी क्रिया है उसी का नाम नमः है, उसी का नाम नमस्कार है। और ये विनम्रता का प्रतीक है। आप नमस्कार करते हैं, नमस्कार कोई सामान्य चीज नहीं। इसलिए भगवान ने कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन सत्वदर्शिनः। ये मंगलाचरण है। भगवान ने कहा कि आप अपने गुरु के सामने जाते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? आप किसी महात्मा के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले नमन है, सबसे पहले प्रणाम है, और वो अहंकार का विसर्जन है। आप सिर झुकाते माने अपने अहम को विसर्जित करते हैं, वहां व्यक्तित्व का विसर्जन है। विनम्रता सामने वाले की स्वीकृति है, विनम्रता सामने वाले के आदेशों की स्वीकृति है, उपदेशों की स्वीकृति है, उसके आचरण की स्वीकृति है। आप प्रणाम कर इसका अर्थ है आप उनके उपदेशों को स्वीकार करें। यह श्रद्धा, ये श्रद्धा है, नमन श्रद्धा है, नमन विश्वास है, नमन आपकी विनम्रता है। और जो विनम्र होता है ना वही नारायण दूसरे के उपदेशों को ग्रहण करने में समर्थ होता है, अभिमानी आदमी नहीं। विनम्रता जैसे स्वर्णकार अलंकार बनाता है तो उसके पहले सोने को क्या करता है? पिघला देता है, और उसके बाद मनचाहे आकार देता है, फिर मनचाहे आकार। आप लोहे को आप पिघला दीजिए, उसके बाद मनचाहे आकार दे दीजिए, और यदि पिघला हुआ लोहा नहीं तो आपको ठोकना पड़ेगा, उसको पीटना पड़ेगा, और उसके बाद भी वो आकार बनेगा कि नहीं आपको भरोसा नहीं है। ऐसे जो विनम्र व्यक्ति होता है ना, गुरु के पास जाता है तो गुरु के आचरण में ढल जाता है, गुरु के उपदेशों में ढल जाता है, गुरु के उपदेश उसके जीवन में चरितार्थ होने लगते हैं, उसको ज्यादा श्रम करना नहीं पड़ता है। ये मंगलाचरण है, ये श्रेष्ठ साधक के जीवन का पहला भाव है, ये साधक के जीवन का पहला भाव, ये नमन, ये मंगलाचरण पहला भाव। इसलिए आप गुरु के पास जाते हैं तो सबसे पहले, आप सत्संग में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? नमन करते हैं। ये मंगलाचरण, ये अध्यात्म का पहला भाव है। और दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगल, या आप समझ लीजिए आशीर्वादात्मक मंगल। आप क्रम से इसको समझेंगे। आप गुरु के चरणों में झुके, आपने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया, और आशीर्वादात्मक मंगलाचरण गुरु ने किया। यह आशीर्वादात्मक मंगलाचरण ना शिष्य नहीं करता है, गुरु करता है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण शिष्य करता है, और आशीर्वाद कौन देता है? जो आशीर्वाद देना है ना वो भी मंगलमय है, ये भी मंगलाचरण है। और यह आशीर्वाद दो प्रकार से है। समर्थ गुरु हो तो गुरु आपको साक्षात आपको आशीर्वाद देगा, आप नमन किए और आपको गुरु की शक्ति मिलेगी। लेकिन गुरु मंगलाचरण ऐसा भी करते हैं कि आपका नमस्कार परमात्मा तक पहुंचा देते हैं, आपकी भावना भगवान तक पहुंचा देते हैं, गुरु माध्यम बन जाते हैं, गुरु उपकरण बन जाते हैं, गुरु साधन बन जाते हैं। सर्वेशम गुरु हूं कालेन अनवच्छेदात, परमात्मा सबका गुरु है, कृष्ण वंदे जगत गुरु। इसलिए गुरु को जब आप प्रणाम करते हैं तो गुरु के भीतर जो गुरुत्व है वो परमात्मा का है। आप ध्यान देना, गुरु के भीतर के गुरुत्व को आप प्रणाम करते हैं कि आप गुरु को प्रणाम करते हैं? आप प्रणाम व्यक्ति से करते हैं कि अव्यक्त को करते हैं? आप गुरु को प्रणाम नहीं करते हैं, आप गुरु के भीतर जो गुरुत्व है, और वो जो गुरुत्व है वही तो परमात्मा है। भैया गुरु तो परमा वही है। परम पूज्य महाराज श्री को किसी ने पूछा कि गुरु का मतलब क्या है? आप सुनते ना जो गुर्राए हो गुरु तो गुर्राने वाला कौन है भैया? एक ही अब अरे जीव में क्या सामर्थ्य है गुर्राने का? इसमें जो गुरुत्व है ना, ये गुरुत्व परमात्मा का है। इसलिए सूत्र है सर्वेषां गुरु।

0: वो सबका गुरु है। और जब आप साधना करते तो गुरुत्व प्रकट होता है। आप साधना कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, आप सत्संग कर रहे हैं, तो आप अपने भीतर के गुरुत्व को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं। आप सत्संग करते करते गुरु बन जाते कि नहीं? चेला ही सेवा करते करते गुरु बन जाता है, मतलब उस सेवा ने उसको गुरु बना दिया, उसके भीतर के गुरुत्व को प्रकट कर दिया। आपका सत्संग, आपकी साधना आपके भीतर के गुरुत्व को प्रकट करने के लिए आप आए हैं। आप चेला बनने के लिए आए हैं कि आप गुरु बनने के लिए आए? तो हैं चेला बनने के लिए, क्योंकि चेला बने बिना गुरु बनने का कोई उपाय नहीं है। आकांक्षा तो गुरु बनने की है। आप ईमानदारी से आप इसका उत्तर देना, आप गुरु बनना चाहते कि चेला? आप बनना चाहते हैं, आप गुरु बनना चाहते हैं, आप अपने भीतर के गुरुत्व को प्रकट करना चाहते हैं। आप हल्का बनने के लिए आते कि भारी? हल्का। लेकिन हल्का बने बिना भारी बनने का कोई उपाय नहीं। शिष्य बने बिना गुरु बनने का कोई उपाय नहीं है। माध्यम है, शिष्य बनना माध्यम है। आप शिष्य बन जाते हैं, आप साधना करते हैं, सत्संग करते हैं और धीरे धीरे अपने भीतर के गुरुत्व को आप प्रकट करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं फिर? गुरु देखो, आप जब प्रणाम करते हैं ना, तो गुरु अपने द्वारा आपके प्रणाम को परमात्मा तक पहुंचा देते हैं। ये आशीर्वाद जो है ना, ये गुरु देता है, माने आपके प्रणाम को भगवान तक पहुंचा देता है, आपकी भावना भगवान तक पहुंचा देता है। आशीर्वाद गुरु कर देता है कि नहीं? आशीष माने आपकी भावना भगवान तक पहुंचाने का जो कार्य गुरु करते हैं ना, उसको कहते हैं आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। और तीसरा जो मंगलाचरण है अब शुरू होता है। पहले आपने नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया, आपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण हुआ और प्रवचन शुरू हो गया तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। परमात्मा के सगुण अथवा निर्गुण स्वरूप का प्रतिपादन करना ही वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। आपने नमस्कार किया, गुरु ने आशीर्वाद दिया और प्रवचन प्रारंभ करके परमात्मा के सगुण स्वरूप का वर्णन करने लगे। भगवान राम ऐसे, भगवान कृष्ण ऐसे, भगवान विष्णु ऐसे, तो मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आत्मा परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म यतो वा इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंशन्ति तत् ब्रह्म अभिजिज्ञासस्व श्वेतकेतो। अब वो निर्गुण परमात्मा का वर्णन करने लगे तो क्या हुआ? ये सब वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ये क्रम है, ये तीनों एक साथ होता है। ये तीनों जो मंगलाचरण है अलग अलग नहीं है। आप ये मत सोचना कि अलग अलग है, ये क्रम है। आप जैसे ही नमस्कारात्मक मंगलाचरण करते हैं तो उसी समय आपके दोनों बाकी के मंगलाचरण अपने आप हो जाते। आपको करना केवल एक मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण, और बाकी के दो अपने आप शुरू हो जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद मिलता है और गुरु आपको फिर कोई ना कोई बात बताना शुरू कर देते हैं, आपके जीवन में मंगलाचरण हो जाता है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और यही मंगलाचरण आपके जीवन में सफलता को पैदा करता है। इसलिए श्रुति कहती है समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। आपको अपनी कामना की पूर्ति करना है या निवृत्ति करना है या कार्य को पूरा करना है तो आप मंगलाचरण करो। और ये मंगलाचरण ना तीन बार किया जाता है, एक बार नहीं, आदौ मध्य अंतेच। आप सबसे पहले, और देखो बीच बीच में भी धन्यवाद देते हैं कि नहीं? जब आप बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात हो, कभी कभी सिर झुकाता है आदमी, जब आप बहुत अच्छी बात श्रवण करते मन गदगद हो जाता है, तो आप थोड़ा सा धन्य। ये बीच वाला मंगलाचरण। और जब मंगला प्रवचन समाप्त हो जाता है, उपदेश समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद भी आप नमस्कार करते हैं। इसलिए कार्य के प्रारंभ में, कार्य के मध्य में और कार्य के अंत में ये मंगलाचरण किया जाता है। ये मंगल, ये हमारे जीवन का सर्वोच्च भाव और अध्यात्म का प्रथम सूत्र है। ये अध्यात्म का प्रारंभ ही इसी मंगलाचरण से होता है। आप अपने बच्चों को मंदिर में ले जाते तो आप बच्चों को कहां से शुरुआत करते हो? आपके बच्चों में अध्यात्म का प्रारंभ नमन से तो होता है, सबसे पहले नमन। आप मंदिर में भी जाते हैं तो बच्चे से प्रार्थना पहले कराते हैं कि हाथ पहले जुड़वाते हैं? शुरुआत ही है, यह हाथ जोड़ने से शुरुआत है। और आप ध्यान देना, हाथ जोड़ने से शुरुआत है और यह हाथ जोड़ना क्या है, ये बहुत ऊंची चीज है भैया। हाथ पैर जोड़ना हम लोग बोलते हैं ये हाथ जोड़ना कोई सामान्य चीज नहीं है। यह हाथ जोड़ना आपके जीवन को परम विनम्र बनाने की कला है, क्योंकि अध्यात्म विनम्रता के बिना संभव नहीं है। यह मंगलाचरण का सर्वोच्च भाव यह भी है कि आपके अंतकरण की कठिनता, आपके अंतकरण के अभिमान, अहंकार के भाव को गला देना, विसर्जित कर। और जो व्यक्ति झुकना, प्रणाम करना, नमन करना जानता है ना, उसके जीवन में धीरे धीरे विनम्रता आ जाती है, उसका हृदय कोमल हो जाता है, उसके अंदर दया, उसके अंदर सहिष्णुता, अपनत्व, ये सारी चीजें समाविष्ट होने लगती हैं और वो व्यक्ति दिव्य आध्यात्मिक बन जाता है, वो साधु बन जाता है। इसलिए नमन करना, नमस्कार करना हमारी जीवन का सर्वोच्च और प्रथम भाव है। इसलिए इससे आप कंजूसी मत कीजिएगा, नमस्कार करने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कई बार तो लोग नमस्कार के चक्कर में पेट को हाथ लगा देते हैं कई बार नमस्कार करने के लिए आते हैं, घुटने को हाथ लगा देते हैं, क्योंकि झुकना नहीं जान रहे हैं, वो औपचारिकता है। आप जब नमस्कार करते हैं तो ईमानदारी से आप दूसरे को दे रहे हैं कि आप ले रहे हैं? आप नमस्कार करके दूसरे के ऊपर उपकार कर रहे हैं कि आप अपने ऊपर उपकार कर रहे हैं? आप नमस्कार करके दूसरे के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं। आपने सामने वाले को नमस्कार किया, सामने वाले को क्या मिला? अरे उसको मिला कि नहीं मिला, लेकिन करने वाले को मिला। आप झुक गए, अभिवादनशीलस्य तस्य चत्वारी वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आप जब अभिवादन करते हैं ना, आप प्रणाम जब करते हैं तो आपके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आपकी आयु बढ़ती है। बात तो सही है, आपसे बड़ा आदमी आपके सामने आया है और आप बैठे बैठे हैं, आप उनको नमन नहीं कर रहे हैं, तो आपकी अंदर की अंतरात्मा आपको ही खाती है। आपको भी लगता है यार उठ नहीं पाए, कछोड़ती है कि नहीं और आपने प्रणाम किया, आपके प्राण उर्ध्वगमित हो जाते हैं, आप प्रसन्नता और आह्लाद से भर जाते हैं, क्योंकि आपने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। सामने वाले ने आपको आशीर्वाद दिया, गदगद हो गया, वाह वाह, आपको सामने वाले को अपना बना लिया है, आपकी ताकत अब दुगनी हो गई है, आप अकेले नहीं है। आप अपने गुरु को प्रणाम किए, आप साधु को प्रणाम किए, अपने से बड़े व्यक्ति को प्रणाम किए, अब आप अकेले नहीं रहे, आपकी ताकत दुगनी हो गई है। दुगनी क्या, ज्यादा, क्योंकि भैया हमसे तो उतना नहीं है हम तो छोटे से, सामने वाला बड़ा है और बड़े में हम मिला, अपने आप को मिला दिए तो हमारी ताकत कितनी बड़ी हो गई। तो प्रणाम करना, एक महात्मा कहते थे कि अरे ये प्रणाम करना बोले सबसे बड़ी पॉलिसी है, ऐसा बोलते थे जब मैं ऋषिकेश में था तो एक महात्मा जी थे, उन्होंने दो चीजें मुझे आज भी याद है। एक बार मैं बड़ा हताश हो गया, उदास हो गया, और पढ़ने के मामले में मैं बड़ा ये था कि पढ़ना मेरे जीवन का उद्देश्य था। 24 घंटे में अपनी पुस्तक अपने सिरहाने पर लेकर के सोता था, जो भी पढ़ता था मैं उसको याद करके पढ़ता था। एक बार हताश हो गया, उन्होंने क्या पढ़ना लिखना है, चलो भिक्षा मांगने के लिए गए नानकपुर आश्रम, और वहां भिक्षा मांग के खाते थे मधुकरी, सफेद कपड़े में था, सबसे लास्ट में भिक्षा लेना पड़ता था, खड़ा था मैं, और डर भी था कि पता नहीं भिक्षा देगा भी नहीं देगा। तो एक करीब 6-6.5 फुट ऊंचे महात्मा, करीब 70-80 साल की उम्र, वे डंडा इतना बड़ा लेके खड़े थे, वो ऐसे लगाए डंडा, विरक्त महात्मा थे। और मैं ऐसे खड़ा था वहां, और वो आए नजदीक। नजदीक आने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि ब्रह्मचारी तुम क्या करते हो? मैं तो ऐसे उदास तो था ही, मैंने कहा महाराज कुछ नहीं करता हूं, बस अन्न क्षेत्र में रोटी खाता हूं, कमरे में जाके सो जाता हूं। उन्होंने जो दो बातें बोली मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे बोले क्या करता है महात्मा? अरे बोले तुम्हारे में इतनी ताकत है कि जहां तुम पैर रखोगे वहीं पानी निकल आएगा। बोले तुम ऐसा अपने आप को व्यर्थ गवाओ मत, बड़ी ताकत है तुम्हारे में। जब उन्होंने एक चीज बोली ना, तो मुझे ऐसा लगने लगा सचमुच कि मैं यहां पैर रखूंगा तो पानी निकलेगा, ऐसा मुझे भाव पैदा हुआ। और दूसरा उन्होंने कहा कि तुमको एक कला बता देते हैं, किसी भी आश्रम के आश्रम में महात्माओं के पास रहना हो तो। मैंने कहा क्या महाराज? बोले जहां भी कहीं रहो सबको प्रणाम करो। बोले ये प्रणाम करना सबसे बड़ी पॉलिसी है मेरी। बोले आप जिस आश्रम में रहोगे, आश्रम के लोग यदि आपसे खुश रहे, ऐसा आप चाहते हैं, तो आप क्या करो? प्रणाम भैया प्रणाम जी स्वामी जी, ओम मना रहे हैं। साधु को क्या चाहिए? आप साधु को खुश करना चाहते हैं, साधु को, हाँ साधु को, मैं साधु शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आपको साधु को खुश करना है तो आपको क्या करना चाहिए? अरे कुछ नहीं करना है, आप थोड़ा झुक के प्रणाम करो। साधु खुश, आप उसको कुछ दो कि ना दो, फूल की माला चढ़ाओ कि ना चढ़ाओ, आप उसको फल प्रदान करो कि ना करो, आप प्रणाम करो, वो खुश। और उसके बाद सचमुच ऐसे ही हुआ, मैं जिस आश्रम में रहता था ना, सबको प्रणाम करता था मैं। जितने 6 महीने का भी बड़ा महात्मा मेरे से हो, उसको भी मैं प्रणाम करता था। और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? उस जहां भी मैं रहता था तो लोग बोलते थे बड़ा विनम्र है ये ब्रह्मचारी। लेकिन उस समय भी मैं सोचता था कि वो महात्मा जी ने बोला था सबसे बड़ी पॉलिसी है। लेकिन आप जब उस चीज को करते जाते हैं ना, तो सचमुच आपका अंतःकरण निर्मल होता जाता है, और वो आपका भाव फिर वास्तविकता में बदल जाता है। आपको भले ही आप में श्रद्धा नहीं है, लेकिन आप करते जाइए, आप करते जाइए। आप में श्रद्धा नहीं है, नमन करने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप कीजिए, आप बलात् कीजिए, ये हठयोग है। आपका जप करने में मन लगता है क्या? लेकिन जबरदस्ती लगाना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप लग जाता है, फिर वो साधना बन जाती है, आपकी आराधना बन जाती है। इसलिए आप नमन करते जाइए, जो भी मिले अपने से बड़ा उसका अभिवादन करते चलिए, और वो धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। जो भी आएगा तो आप झुक लेंगे, फिर आप जो भी मिलेगा तो आप झुक लेंगे, क्योंकि आपका स्वभाव बन गया। इसलिए हमारे जीवन में ये नमन सर्वोत्कृष्ट साधना है, और ये साधना सामान्य मत समझ लीजिए, इसको टालिए मत। इसलिए हमारे ग्रंथों के प्रारंभ में हर जगह पर, हर जगह पर आपको मिलेगा मंगलाचरण। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देखिए, उस सबसे पहले क्या है? मंगलाचरण। और यहां कठोपनिषद में सबसे पहले आप जो श्लोक बोलते हैं ना, ओम सहना भवतु, ये आपके कठोपनिषद का मंगलाचरण है, आपके कठोपनिषद का शांति मंत्र है। आप 10 शांति मंत्र बोलते हैं, आप 11 क्यों नहीं बोलते? आप 9 क्यों नहीं बोलते? आपके 10 उपनिषद हैं, और 10 उपनिषद के एक एक मंत्र हैं। आप 10 मंत्र बोलते हैं, शांति के मंत्र बोलते हैं, वो 10 शांति के मंत्र आपके 10 उपनिषदों से लिए हैं, एक एक एक। हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, ये आपकी छोटी सी 10 शांति मंत्र की पुस्तक है ना, ये सारी चीजें हमने वहीं से सीखी हैं। हमको गायत्री मंत्र की दीक्षा कैलाश के मंडलेश्वर जी महाराज ने दी थी, जो हम तो 13 साल की उम्र में घर छोड़े हैं, बहुत बच्चे थे घर से भागे। फिर उन्होंने पूछा, वो बड़ी लंबी कथा है, संक्षेप में सुना रहे हैं, छोटा सा रूप देखा उन्होंने, और भी बोले ब्रह्मचारी क्या करते हो? मैंने कहा महाराज पढ़ता हूं। कहां पढ़ते हो? मैंने कहा कैलाश आश्रम में पढ़ता हूं। बोले तुम्हारी दीक्षा उपनयन संस्कार वगैरह हुआ? सब कुछ पूछा उन्होंने। मैंने कहा नहीं महाराज, तो ये कैसे पहना? मैंने कहा ऐसे घर में पहना दिया लोगों ने। हमने कहा घर में ऐसे पहना दिया है लेकिन अभी संस्कार नहीं हुआ है। वो कहा गया कि संस्कार आगे करेंगे करेंगे, लेकिन टलता गया। तो बोले नहीं, तुम्हारा संस्कार होगा। तो उन्होंने स्वयं फिर स्वयं यज्ञ में बैठाया। वो कराते हैं ना वो कैलाश आश्रम, ये 10 शांति मंत्र वहां कैलाश आश्रम में हम प्रतिदिन पढ़ते थे। जैसे सुबह पहुंचते हम लोग तो वहां शांति मंत्र का पाठ होता है सुबह सुबह, प्रातः सुबह, और वहां फिर नारायण वो सारा पाठ करते करते। कैलाश आश्रम को सामान्य संस्था नहीं थी, रावी भी हैं वहां के छात्र, आपको हर जगह पर मिलेंगे। एक एक मंत्र एक एक उपनिषदों से लिए और वो 10 मंत्र बना दे और आप उसका पाठ करते। ये मंगलाचरण है, उसमें भगवान से प्रार्थना है। आप इसको आपको मैं बताऊंगा कल, ओम सहना भवतु का अर्थ क्या है। इसमें भगवान से प्रार्थना है, प्रत्येक मंत्रों में प्रार्थना है। और प्रार्थना के पहले आप एक शब्द बोलते हैं जो आपके संपूर्ण मंत्रों का मूल मंत्र बीज मंत्र है, और वो है ओम। आप कोई भी मंत्र बोलते तो आप उसके पहले क्या लगाते हैं? लेकिन आपको मालूम है ओम का अर्थ क्या है? ओम बहुत गहरा, बहुत ही गहरा हमारा मंत्र है, बहुत गहरा। और जितने भी दुनिया के मंत्र है ना, संपूर्ण मंत्रों का जो आदि मंत्र है वो कौन है? ओम। ओंकारश्च अथ शब्दश्च द्वावे तो ब्रह्मण पुरा कंठम भीत्वा विनिर्यातो तस्मात मांगलिका उभौ। भगवान का सबसे पहला नाम क्या है? भगवान का सबसे पहला, ब्रह्मा जी ने सबसे पहली साधना की भगवान की, और उस साधना का मंत्र क्या था? ओ, जब ब्रह्मा जी पैदा हुए और भगवान ने आदेश दिया कि तुम तप करो, भगवान ने पहले कहा कि सृष्टि का निर्माण करो। उन्होंने कहा ताकत नहीं, कमजोर आदमी क्या करूं मैं। भगवान ने कहा तप करो, तप। उन्होंने कहा तप करे तो तप के लिए कोई माध्यम भी तो होना चाहिए। तुम्हारा भगवान ने बोला नहीं, भगवान ने केवल आशीर्वाद दिया, अनुग्रह किया, और ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रणव की ध्वनि प्रकट हो गई। ओंकारश्च अथ शब्दश्च कंठम भीत्वा विनिर्यातो, कंठ का छेदन करके वह अपने आप, वह कंठम भीत्वा का अर्थ क्या है वहां मालूम नहीं पड़ा। वहां तो ब्रह्मा जी को यह भी नहीं मालूम पड़ा, जबरदस्ती हठात बलात् कंठ से ओम की ध्वनि निकली। वहां कोई विचार नहीं था, वहां कोई सोच नहीं था, कोई कल्पना नहीं। भगवत प्रेरणा से ब्रह्मा जी के कंठ से ओंकार की ध्वनि निकली सबसे पहले, और फिर उसी ओंकार की साधना ब्रह्मा जी ने की, और उसी का सामर्थ्य उनमें आपको दिखाई देता है। तो आपको कल बताऊंगा कि ओंकार क्या चीज है, ओम का अर्थ क्या है, और वो हमारे जीवन का बीज मंत्र कैसे हैं, और ओंकार के बिना हमारे कोई भी मंत्र संभव नहीं है। कैसे नहीं मैं आपको कल बताऊंगा। ओम का अर्थ और ओम सहना भवतु, ये जो मंगलाचरण है कठोपनिषद का, ये कितना सुंदर और कितना ऊंचा और कितनी ऊंची प्रार्थना है हम कल सुनेंगे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम नमः शिवाय।
1: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
2: Anya Gajane, Mahanamni Pradha Saram.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।